89.6 Mirchi 1. It's hot.

पल पल में शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है मेरी जरूरत है।

लेकिन जिसे भी ये कहा है कि a beautiful heart reflects in your personality, ये बिल्कुल सही कहा है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज का ये ख्याल जो सुबह सुबह मुझे आया है, दिस इज ट्रूली गोना गिव यू सच अ स्ट्रॉन्ग टेक अवे। और वो कुछ ऐसा है कि कभी आपने नोटिस किया है कि जो खूबसूरत लोग होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट करने में ना कंजूसी नहीं करते हैं, जो अमीर होते हैं वो किसी को सपोर्ट करने में, पुश करने में, मोटिवेट करने में कंजूसी नहीं करते हैं। जो एथलीट्स होते हैं वो बिल्कुल आपको उसी तरह से देखते हैं कि भाई आप भी उनकी तरह फिट हो जाए। अगर इफ़ यू हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट, दिस एवरीथिंग फॉलोज। बस आप भी अगली बार ना किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी सोचिए मत एक बार भी। देखिए, आपका जो तौर तरीका है, आपका जो एटीट्यूड है, वो अपने आप लोगों को मोटिवेट तो ज़रूर कर लेता है, लेकिन अ ब्यूटिफुल हार्ट इज सो इम्पॉर्टेंट। एंड आप ना चाहकर भी या चाहकर भी ना, इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स इन हाउ यू टॉक, हाउ यू ट्रीट एंड हाउ यू आर ओवरऑल। बस आपकी एक मुस्कुराहट में ही वो बिल्कुल समझ आता है कि आपका दिल कैसा है। तो बस मुस्कुराइए, हाँ, बस विद दिस ब्यूटीफुल स्माइल नाउ आपके दिन को बस खूबसूरत बनाने की यही मैं उम्मीद करती हूँ। बट माय शो मिर्ची मॉर्निंग्स माइक से दिल तक आप चीन के साथ। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskra bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. La firma la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Bhai sahab, Srinivas Puri Thane se bol raha hu. Mobile kahan se mila aapko? ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है इस नंबर से, गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है
3: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
11: Udaari pe jo haath phere, saari duniya hille.

दोस्तों, कुछ कंट्रीज आपको फाइनेंशियल सुकून देती है एंड कतर सीम्स टू बी वन ऑफ देम। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और आज ये बताना चाहूंगी आपको दैट कतर को ऑफिशियली रैंक किया गया है वर्ल्ड का सिक्स्थ मोस्ट अफोर्डेबल टैक्स फ्री कंट्री टू मूव इन 2026। यस, यू हर्ड इट राइट। विलियम रसल टैक्स फ्री रिलोकेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग कतर ने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। एंड ऑनेस्टली, हम जो यहाँ रहते हैं, हम यहाँ सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं लगता है, ये डेली लाइफ में फील भी होता है। जब देखिए ना, दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में सैलरीज आती है, लेकिन उसमें से बहुत ह्यूज चंक टैक्स के लिए चला जाता है। लेकिन यहां कतर में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, विच मींस जो आप कमाते हो उसका ज्यादा हिस्सा एक्चुअली आपके फ्यूचर में, फैमिली में, उस ड्रीम्स पर, उस पर लगता है। लेकिन अफोर्डेबिलिटी जो है सिर्फ चीप होने का नाम नहीं होती है, कतर की रियल लग्जरी है इट्स क्वालिटी टू कंफर्ट रेशियो, सेफ रोड्स, लेट नाइट सिक्योरिटी, क्लीन पब्लिक स्पेसेस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मूथ डिजिटल सर्विसेज, मेट्रो कनेक्टिविटी, और यस, एक एक्सपैट फ्रेंडली इकोसिस्टम। दैट्स द रियल फ्लेक्स फॉर कतर, नहीं? अच्छा, पहले ना लोग गल्फ सिर्फ अर्निंग डेस्टिनेशन के लिए आते थे, अब कतर ना स्लोली एक लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन बन रहा है। ऐसा नहीं लगता आपको? फैमिलीज यहाँ पर जब सेटल होती है ना, तो वुमन दे फील सेफ यर ट्रैवलिंग अलोन। बच्चों के लिए यहाँ पर पार्क्स है, सेफ्टी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ग्लोबल स्कूल्स है। मतलब यहाँ ये जगह अब सिर्फ एक काम की जगह नहीं है, ये एक प्रॉपरली क्यूरेटेड लाइफ लगने लगी है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम एक्सपैक्ट्स भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, डेफिनेटली, बिकॉज कतर सिर्फ बिल्डिंग्स से नहीं बना है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बना है, यहाँ के रहने वाले लोगों से भी बना है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि कतर में क्या खास है, तो बस कहना यहाँ सिर्फ टैक्स कम नहीं, टेंशन भी कम है। माइक से दिल तक आप स्ट्रीम के साथ जुड़े हो और मिर्ची इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा,
9: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अजी 5 घंटे की नींद और फिर भी फुल एनर्जी। अगर आप ऐसे हो तो सच बताओ, कॉफी पर जिंदा हो क्या या फिर सच में सुपर हीरो हो? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज एक इंटरेस्टिंग स्टडी सामने आई है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4-5 घंटे की स्लीप पर भी बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। वेल, रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये लोग रेयर जेनेटिक म्यूटेशन वाले होते हैं, लेस देन 1% पॉपुलेशन, मतलब नेचुरली शॉर्ट स्लीपर्स। मैं तो इन्हें सुपर हीरोज ही कहूंगी। वेल, अगर टेक्निकली थोड़ा सा बताऊं तो इसमें एक जीन होता है DEC2 जिसे कहते हैं, जो बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। इन लोगों का ब्रेन फास्टर रिकवरी करता है, मेटाबॉलिज्म शार्प रहता है और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस भी इनकी बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं। बेसिकली बिल्ट इन एफिशिएंसी मोड है इनका। वैसे ये सबके लिए नहीं होता, बाकी लोग अगर 5 घंटे सोकर हीरो बनने की कोशिश भी करें ना तो रिजल्ट होता है ब्रेन फॉग मेरी तरह, इरिटेबिलिटी और लो फोकस, मतलब सुपर पावर नहीं, मैं बिल्कुल स्लो मोशन मोड में चली जाती हूँ। वैसे आपका क्या टाइप है, मतलब कितने घंटे की नींद के बाद आपको एकदम फ्रेश वाली फील आती है? देखो, मैं तो उस किस्म की कैरेक्टर हूँ जो भले ही 7 घंटा सो जाए उसके बाद भी मेरे जो अलार्म्स होते हैं ना वो 10 अलार्म्स होते हैं विद 10 snoozes। एंड आई नो पीपल जो सही में 5 घंटे में फुल ऑन एनर्जी में काम करने लगते हैं। यू गॉट टेल मी 5000-1896 पर कि कौन से कैटेगरी के इंसान हैं, सुपर पावर वाले हो कि भाई हमें तो कॉफ़ी की भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस 5 घंटे की नींद ही काफ़ी है, या फिर आप मेरी तरह हो भाई, नींद ही तो असली सोना है, असली गोल्ड है फॉर अस। 5000-1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर। और तब तक के लिए लगाना, एंजॉय कीजिएगा राइट हियर माइक से दिल तक आफरीन के साथ। और मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who's that?
5: Butt.
6: Butt? Are you butt?
5: Butt. Bike बहुत आवाज करती है.
6: Cut, cut. Who's that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi.

0: It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही हैं, तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: वेल मधुमती बागची और जैस्मिन सनलस की आवाज में ये गाना, वैसे मधुमती बागची तो पॉपुलर है ही उनके आइटम नंबर गानों के लिए, लेकिन विद दिस मूवी धुरंधर शाश्वत सचदेव ने एक अगर सिंगर को चमका दिया है तो वो है जैस्मिन सनलस। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और वक्त हो चला है सुबह के 7:02।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है और चलिए जरा देखते हैं तापमान, सलमान क्या कहता है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: वेदर अपडेट।
0: वेल तापमान का ये हाल चाल है आज का, दैट मैक्सिमम टेम्परेचर आज के दिन 41 डिग्री सेल्सियस पर जाने वाला है, वेयर एज मिनिमम इज एट 30 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल जो महसूस कर रहे हो वो 32 डिग्री सेल्सियस पर है और ह्यूमिडिटी जो है वो 39% पर है, हवाएं कुछ खास चल नहीं रही है। हालांकि ये कहा जरूर जा रहा है कि जुलाई तक, लाइक मिड जुलाई तक हवाएं चलने वाली है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। तो यार वो कहते हैं ना, हर चीज में कुछ अच्छा ही देख लो, तो ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी तो पसीने नहीं आएंगे तो ज्यादा गर्मी नहीं होगी, यही सोचते हुए आज के दिन को आगे बढ़ाते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
0: वेल गुरु की आवाज में अगला गाना साथ देते हैं, याद करो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक जरूर हो गए क्योंकि 90s के गाने को फिर से पेश किया गया है। एंजॉय मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjet bala burka.
1: Mirchi, burka. Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Motor se bol rahe hain?
1: हाँ जी
2: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
1: ठीक है सर,
2: 5 सेकंड जल्दी।
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: प्लीज जल्दी बता दो।
1: हेलो
2: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता। हेलो,
4: हाँ जी सर।
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर पे हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड।
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर।
2: एक सेकंड रुकिए।
4: सर साइड में, लेफ्ट साइड में।
2: ओ यार, मेरा छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
4: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
2: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए। ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
4: हाँ जी।
2: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी।
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
4: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
2: एक सेकंड रुकिए।
4: क्या हो गया?
2: गाड़ी ठुक गई।
3: मैडम, क्या नाम है आपका?
1: दिव्या।
3: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
1: I was so tense, I don't know what
5: happened. मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM Mirchi 1 Mirchi 1 It's hot.

0: देखिए कतर में अगर कोई चीज का बेसब्री से इंतजार होता है तो वो है ईद का। एंड थैंक्स टू कतर की हुकूमत जो दिल खोल के इतनी छुट्टियां जो देती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अप सिंड्रो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड टॉकिंग अबाउट ईद की छुट्टियां। कतर में हर एक इंसान इस छुट्टियों को मनाता है, कोई यहां पर अपनों के साथ में फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करके, तो कोई बाहर घूम कर वेकेशन प्लान बनाकर या अपने होम टाउन विजिट करके। एंड ऑन दिस नोट कतर कैलेंडर हाउस के एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 27 मई को ईद उल अदा का पहला दिन हो सकता है। Yes, you heard it right. और 18th मई से दुल्हज्जा शुरू होने के एक्सपेक्टेशंस भी है। So, well, आपके क्या प्लान्स है दिस ईद? Let me know. वैसे अभी तक छुट्टियों की जो डेट्स है वो आए नहीं है, वो कुछ ही दिनों में आ जाएंगे और हम यहाँ पर आपको बता देंगे। लेकिन जहाँ आपको ईद का एक अंदाजा तो अब आ गया है कि अराउंड विच डेट्स है, तो कुछ तो सोचा होगा आपने ईद में यहाँ रहना है, कहीं जाना है, या आर यू प्लानिंग ऑन सम वेकेशंस? 5000 1896 इज माई नंबर। लेट्स कनेक्ट हियर। तब तक के लिए माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: मिर्ची स्टोरीज
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
4: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
5: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: IBE payments ka wah tarika. With IBE, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBE app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBE, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: Authentic, original, and better than our right.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
3: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उस पे खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
2: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: यार बजट ही नहीं बन रहा है, प्राइसेस देखें, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
2: मैंने बोला था ना मई 12th का वेट कर।
1: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
2: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में। मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th to 18th में। इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
1: किलर ऑफर्स। मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
0: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
3: कटकटे,
4: अबे कौन है?
3: उत्तपा।
4: उत्तपा कौन?
3: उत्तपा, मैं दो डोसा और सांभर ऑर्डर किया था, आया क्या?
4: खटखट, हू दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

अमित त्रिवेदी की ये खूबसूरत आवाज में गाना राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग साथ है आफरीन का, और कुछ ही देर में बॉलीवुड का सवाल लेकर आ रही हूँ, लेकिन ये अमित त्रिवेदी का नशा थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं। कमिंग अप नेक्स्ट ट्रैक अमी विर्क और शाहिद मालिया की आवाज में, येट अनदर अमित त्रिवेदी कॉम्पोजिशन ऑन मिर्ची, माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: सुन गाना है ना, क्या जबरदस्त गाने के बाद अब टाइम आ चला है। चलिए जबरदस्त सा सवाल सुने यहाँ पर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आफरीन है आपके साथ और आफरीन का ये वो वक्त है जब वो आपके दिमाग के घोड़ों को दौड़ाती है इस तरह के यार, मतलब आप सुबह सुबह सोचते हो कि बहुत मेहनत करा रही है आफरीन। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जब बात बॉलीवुड की आती है ना तो एंटरटेनमेंट की बात आती है ना। सो वेल इट्स टाइम फॉर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, जहाँ पर मैं आपको सीन सुनाने वाली हूँ और आपने गेस करना है कि आखिर ये कौन सी मूवी का सीन है, राइट? तो बस इसी के साथ रेडियो सच के वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से ये सीन सुनो।
1: Lights, camera, scene test. Scene test.
2: Sorry, Ram. वो प्रोफेसर राघव ने तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए फोर्स किया।
3: I love it, ma'am. I mean, it's my duty, ma'am.
2: तुम वाकई बहुत अच्छा डांस कर लेते हो।
3: Yeah.
2: कहाँ से सीखा?
3: Actually, ma'am, आपको देखते ही मैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली बन जाता हूँ।
0: जो लोग के पास नंबर नहीं है पहले उनको तो बता दो 5000186 5000186। ठीक है, वैसे तो मैंने कोई पॉपुलर डायलॉग नहीं सुनाया आपको, बस एक पॉपुलर मूवी से एक सीन सुनाया है आपको, लेकिन आप तो बड़े स्मार्ट निकले, बहुत सारे जवाब आए हैं यहाँ पर। लेट मी गो एंड रिस्पॉन्ड टू देम। तब तक के लिए अगला गाना, आई एम श्योर यू गोना लव दिस सॉन्ग, एंड अगले गाने के लिए आप यू गोना टेल मी आफरीन, ओफ क्या गाना लगायो अदनान सामी की आवाज में। मैं सच कहूँ ना, जब तक कि मैं कोई इंडी पॉप गाना या कोई 90s का गाना बजाऊं नहीं ना, चैन तो मुझे भी आता नहीं बिल्कुल उस गाने की तरह। माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: अरिजीत सिंह का जादू इन दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी लूडो. अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, देखना चाहिए. नेटफ्लिक्स पर है इफ आई एम राइट, और ये सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पर ही आई थी मूवी. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को ऑन एनर्जी मॉर्निंग. सर देखिए भाई, ये वो वक्त है जहां पर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेला जाता है. सीन सुनाती है आफ्टरनून और आपको गेस करना होता है आखिर कौन सा सीन है, कौन सी मूवी है. ये मूवी तो काफी पॉपुलर है, लेकिन जो सीन मैंने सुना है भाई, इट्स नॉट एट ऑल पॉपुलर, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन आप तो हो कमाल, तो बस कमाल सुन लीजिए अब.
1: सॉरी राम, वो प्रोफेसर राघव ने तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए फोर्स किया.
2: आई लव इट मैम. I mean, it's my duty, ma'am.
1: तुम वाकई बहुत अच्छा डांस कर लेते हो.
2: Yeah.
1: कहाँ से सीखा?
2: Actually, ma'am, आपको देखते ही मैं जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली बन जाता हूँ.
0: Not again. But we love it, यार. कितना क्यूट लगे हैं शाहरुख खान इसमें, है ना? कौन सी मूवी है ये तो आप बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगी. और ये कौन कौन बताया है पहले वो तो मैं बता दूं. भाई बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर लिख पाई हूँ. वो है चिनू, हुजैब, निकिता, जस्सी, आफ्ताब, मोहम्मद अख्तर, रिजाउल हुसैन, हसन, देन आई हैव मनाली, सुमैरा, उपेंद्र शर्मा, मुस्तफा, खुमैल, सुलेमान, एंड द लिस्ट इज लॉन्ग. और अब भी मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर. अपना नाम तो लिख लो भाई ताकि मैं बोलूँ. मोहम्मद शाहिद. और ये कौन है? बस नाम नहीं पता मुझे फिलहाल के लिए. तो आंसर क्या है ये चलिए सुनते हैं आपकी ही आवाज में.
3: Hi, Afreen, good morning,
0: Manali
3: here.
0: Hi,
3: it's Manali. Susmita Sen and Shahrukh Khan.
0: Yes,
3: Rock
0: you're right.
3: Movie.
0: That good is
4: morning.
0: Right.
4: This is Mohammad Akhtar.
0: Good morning.
4: The name of the movie is Main Hoon Na, directed by Farah Khan, produced by Gauri Khan, and
0: okay.
4: Bollywood star Shahrukh Khan and Susmita Sen, along supported with Zaid Khan.
0: क्या बोलूं मैं, मेरे लिए कुछ छोड़ा है बोलने के लिए, मतलब हर चीज तो बता दी है आपने. तो विद दिस इट इज मैं हूं ना. और जहां मैं हूं ना की बात आती है, फराह खान ने एक बार बताया था कि सुनील शेट्टी का जो किरदार था, ही वॉज द एंटागनिस्ट, और उसमें नो वन वॉज रेडी टू प्ले दैट रोल. मतलब वो बड़े बड़े नाम के पास गए, नसीरुद्दीन शाह के पास गए, उन्होंने मना किया. देन कमल हसन के पास गई, वो उन्होंने मना किया. देन शी वेंट टू वन मोर एक्टर, दैट वाज नाना पाटेकर. आई मीन नाना पाटेकर इस किरदार में होते क्या जबरदस्त लगते. नहीं, बट ही आल्सो रिफ्यूज्ड एंड देन अन्ना केम इनटू दिस कैरेक्टर. चलिए फिर अगला गाना जो मैं बजा रही हूँ, हुजैब नोज द ट्रेंड हियर, के आफरीन कुछ गाने को ऑप्शन देती है. उससे पहले ही हुजैब ने यहां पर बता दिया कि आफरीन ये गाना हमको सुनना है, अनु मलिक वाला गोरी गोरी फ्रॉम दिस मूवी. तो चलिए, हर रोज आप जवाब देते हो तो आपके लिए ये गाना. From the movie, मैं हूं ना, के श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, आना वाली की आवाज में, माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन एनर्जी. इट्स हॉट.

ये जब हम इंडिया से या पाकिस्तान कहीं से इन कतर आ रहे होते हैं तो बड़ी लिस्ट रहती है कि हमारे लिए ये ले लेके आओ, वो लेके आओ। लेकिन कोई जब यहाँ से अपनी कंट्री जा रहा होता है तो एक रिक्वेस्ट कभी ना कभी किसी की आती है कि भाई हमारे सिर्फ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये लेकर जाओ। बड़ी फिक्र होती है ना इस चीज़ की। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और ये एक स्ट्रेस जो है आपका, ये तो बड़ी लिस्ट रहती है कि हमारे लिए ये ले लेके आओ, वो लेके आओ। लेकिन कोई जब यहाँ से अपनी कंट्री जा रहा होता है तो एक रिक्वेस्ट कभी ना कभी किसी की आती है कि भाई हमारे सिर्फ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये लेकर जाओ। बड़ी फिक्र होती है ना इस चीज़ की। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली

0: एक्चुअली अब डॉक्यूमेंट्स ट्रैक करना इजी हो गया है और वो कैसे कतर के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मेट्रैश ऐप में क्यू पोस्ट ट्रैकिंग इंक्वायरी सर्विस ऐड की है. मतलब अब आप क्यू पोस्ट से भेजे गए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस इजीली ट्रैक कर सकते हैं. बस ट्रैकिंग नंबर एंटर करो, डिस्पैच पॉइंट मेंशन करो और अपडेट्स आपके बिल्कुल सामने. एंड ऑनेस्टली दिस इज मोर देन जस्ट अ फीचर अपडेट. ये कतर का वो सटल फ्लेक्स है जहां सिस्टम्स क्वाइटली स्मार्टर होते जा रहे हैं, एफिशिएंट, स्ट्रीमलाइंड, हेसल फ्री. एंड ये हमें हमेशा स्ट्रेस रहता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स आजकल की दुनिया में कितनी इंपॉर्टेंट है, भले वो पासपोर्ट हो आपका या फिर आपके एजुकेशन से जुड़ी हुई या एनीथिंग. दिस इज सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ. और अगर आपको कहीं यहां से वहां कुछ भेजना होता है तो एक ऐसा लगता है कि भाई आप बहुत प्रेशियस चीज अपने किसी के हाथ थमा रहे हो. बट नाउ इफ यू आर डूइंग दिस विद क्यू पोस्ट, दिस इज एब्सोल्युटली हेसल फ्री. सब कुछ आपके सामने रहेगा. सो विद दिस मैं हूं आफरीन आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. ऐसे ही अपडेट्स लेते आते रहूंगी ऑन दिस शो. तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ ऑन मिर्ची इंसॉट.
1: मिर्ची फ्रेश माल.
2: Say wow! Hey guys, this is Varun Dhawan. Wow, that goes pow.
3: Swag, style और non-stop dancing के लिए तैयार हो जाओ.
2: Add it, turn it up, don't sit now. Just go wow.
3: Wow! Say wow!

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधु और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
2: it's hot.

0: Mirchi. Busca bana, busca bana, saca bana. Burka, burka, burka. La vida la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
1: बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी भाई संतोष, यहाँ थाने से बोल रहा हूँ, आपको थाना आना पड़ेगा।
1: क्यों?
2: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
1: गए थे जी।
2: आपने धरने पे बैठे थे आप?
1: जी बैठे थे।
2: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी 3 लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
1: हाँ बताओ। जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
2: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा, मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
1: जी जी गए थे जी।
2: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
1: जी जी।
2: आपके पड़ी लाठी कोई?
1: मेरे तो नहीं पड़ी।
2: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके 3 लाठियाँ रख गई हैं यार, 3 लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो 2-3 लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
1: सर आप नाराज क्यों?
2: नहीं नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ
1: सर। अपने दोस्तों के कहने पे गया था, बहुत दूर था सर लाठी।
2: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई, बहुत दूर थे।
1: बहुत दूर था सर
2: भाई, इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप। आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
1: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
2: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, 3 लाठी रजिस्टर पे चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
1: सर नाराज क्यों है?
2: नहीं
1: तो
2: नाराजगी की तो बात है,
1: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
2: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, 3 लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में 3 लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई। यार
1: नहीं
2: यार, नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं मेरे को तमीज सिखा रहा, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई, इस बात समझ में नहीं आ रही। लाठी चार्ज हुआ था, उसमें 3 लाठियां तुम्हारे नाम की है,
1: वो
2: बहुत दूर था, नाराज वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ।
3: संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
1: कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद, इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

देखिए बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन आपके ड्राइव के हम सफर सुबह के वक्त मैं तो होती हूँ आपकी सुबह वाली आदत। और वो क्या है ना, मेरी एक अच्छी आदत भी है आपका फायदा करवाने की। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन, को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड इट्स टाइम फॉर आईपीके एक्सचेंज रेट्स, जहां फायदे की बात हुई है। देखिए आज का एक्सचेंज रेट ये कह रहा है, एक कतर रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.19 जनाब, वहीं पाकिस्तानी रुपीस 77.03, बांग्लादेशी टाका 33.67 पर है, श्रीलंकन रुपीस 88.55 एंड नेपाली रुपीस इट इज एट 41.86। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन पर, माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की AI रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। MK आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अल वक्रा, अल जनूब गार्डन्स, ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424। MK आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सीलेंस।

10 out of 10 क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
1: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
2: दोनों मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बेनी बयाल और नीति मोहन की आवाज में ये दमदार गाना राइटर और मिर्ची और ये दमदार आवाज आपके साथ जुड़ गई है। नहीं भाई ये तो प्यारी सी है ना सिंपली आफरीन और मिर्ची मॉर्निंग्स। और नई कहानी नया दिन, देखिए मूवीज तो है ही ये पुरानी, लेकिन इसको पेश करने का अंदाज थोड़ा सा नया हो जाता है। और बात क्या कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ हमारे गेम के बारे में जो इस वक्त पर मैं करती हूँ, जहाँ मैं मूवी की कहानी सुनाती हूँ आपको अपने ही अंदाज में और आपने गेस करना होता है कि आखिरकार आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी क्या है ये। एक पुलिस ऑफिसर एक फेमस एक्टर के मिस्टीरियस कार एक्सीडेंट केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। एक्सीडेंट सिंपल लगता है पर जितना वो केस के अंदर जाता है उतना ही रियलिटी और गिल्ट मिक्स होने लगते हैं। ऑफिसर खुद भी इमोशनली ब्रोकन होता है क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ एक ट्रेजेडी के बाद साइलेंटली कोलैप्स हो चुकी होती है। घर में साइलेंस, मैरिज बहुत स्ट्रेन है, नींद एकदम मिसिंग है। इन्वेस्टिगेशन के बीच उसे एक मिस्टीरियस लड़की मिलती है जो रात को अचानक हर जगह अपीयर हो जाती है, कभी हेल्प करती है कभी और कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ऑफिसर उसके साथ बात करते करते केस के क्लूज भी सॉल्व कर रहा होता है और अननोइंगली अपने अंदर का पेन भी। और फिर जब क्लाइमैक्स रिवील होता है तो फिर बहुत ही कुछ ज्यादा रिवील हो जाता है। बस ज्यादा नहीं बताना है मुझे, बस इतना ही है, काफी है। 5000196 इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे बताइए कौन सी मूवी की बात कर रही है आफरीन। आई सी सो मेनी मैसेजेस यू आर ऑलरेडी। नौशीन, ताहिर, मोहम्मद सुफखान, और ये कौन है भाई आफरीन? अच्छा आपका नाम आफरीन है, अच्छा जी चलिए इनके मैसेजेस का मैं रिप्लाई करती हूँ। तब तक के लिए आप जो है बने रहिएगा माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
0: और अरिजीत सिंह की आवाज में आफरीन का फेवरेट गाना एंजॉय कीजिएगा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से आई एम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
2: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुलशन सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
1: शाहरुख खान इतना चार्म कहां से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: कौन है?
4: स्टेन।
3: स्टेन कौन?
4: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
5: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, दिलजीत पाजी और बादशाह मिलकर आपको एंटरटेन कर रहे थे राइटर ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आफरीन का साथ है आपके साथ और यहाँ पर हम गेम खेल रहे थे, ठीक है। वो गेम जहाँ पर मैं अपने अंदाज में अपने तरीके से आपको एक मूवी की कहानी सुनाती हूँ, आपने गेस करना होता है कि आखिरकार ये मूवी है कौन सी। भाई आफरीन जो बात कर रही है, सो वेल आज की कहानी क्या है, कहाँ गई मेरी कहानी, कहानी मेरी यहाँ पर है। हाँ जी, आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक पुलिस ऑफिसर एक फेमस एक्टर के मिस्टीरियस कार केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। एक्सीडेंट सिंपल लगता है लेकिन जितना वो केस के अंदर जाता है उतना ही रियलिटी और गिल्ट मिक्स होने लगते हैं। ऑफिसर खुद भी इमोशनल ब्रोकन होता है क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ ना एक ट्रेजेडी के बाद साइलेंटली कोलैप्स हो चुकी होती है। घर में साइलेंस, मैरिज स्ट्रेन है और नींद इसकी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के बीच उसे एक मिलती है मिस्टीरियस लड़की और वो ना रात को अचानक से हर जगह अपीयर हो जाती है। कभी हेल्प करती है तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ऑफिसर उसके साथ बात करते करते केस के क्लूज सॉल्व करने लगता है और फिर क्लाइमैक्स में ऐसा कुछ रिवील होता है कि जिस इंसान को ऑफिसर पूरी मूवी में समझने की कोशिश कर रहा होता है वो नॉर्मल इंसान तो था ही नहीं। कौन सी मूवी है ये? बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस आए हैं, चलिए मैं आपको सही जवाब यहाँ पर सुनाती हूँ। चलिए चलिए चलिए, क्या है?
2: सॉरी राम,
1: नहीं ये तो डायलॉग है। ये है सही जवाब।
2: हाय अफरीन, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
2: मिस तलाश।
1: ऑल राइट,
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज पैट्रिक। द मूवी नेम इज तलाश।
1: That is absolutely right. यहाँ पर जाहिद, हिमांशु, आफ्ताब, जावेद, ताहिर, पप्पू शाफी, नौशीन सबके मैसेजेस आए हैं कहते हुए कि आफरीन। और खयाम अख्तर, इनका भी अभी मैसेज आया है कि मूवी नेम इज तलाश एंड दैट इज द राइट आंसर। आमिर खान और करीना कपूर खान की ये मूवी तलाश विच हैड सम एक्चुअली गुड सॉन्ग्स। चलिए ऑप्शन नंबर वन आपको देती हूँ यहाँ पर, कौन सा गाना मैं बजाऊँ। चलिए, क्या आप ये गाना सुनना पसंद करोगे? या फिर ऑप्शन नंबर टू, लवली? यार ये भी अच्छा है, ऑप्शन नंबर थ्री। सो वेल, ऑप्शन नंबर थ्री इट इज। प्लेइंग सुमन श्रीधर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची फ्रॉम द मूवी तलाश। आप बने रहेगा मेरे साथ यानी माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi One. It's hot.
0: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
2: मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है आपका. आफरीन है आपके साथ राइट ईयर. और मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब फिलहाल मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:01 की तरफ. अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची इट्स हॉट.
3: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

देखिए ये वाली खबर सुन लीजिए, नहीं तो गलती से गलत एड्रेस पर आप पहुंच जाओगे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और रिलेटेड है ये खबर ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से तरफ, क्योंकि ये अब जो ऑफिस मदीना खलीफा में था ये शिफ्ट होकर लुसैल में चला गया है। सो अगर आपका ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में या व्हीकल रिलेटेड इंक्वायरी का काम पेंडिंग है तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि मदीना खलीफा नहीं लुसैल जाना है। एंड वेल लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट जस्ट एड्रेस अपडेट। अगर देखा जाए तो कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेजुअली नॉर्थ साइड एक्सपांड होते जा रहा है, काफी सारे ऑफिसेज लुसैल की तरफ खुल रही है एंड लुसैल स्लोली सिर्फ फ्यूचर सिटी नहीं रहेगी, अब एक्चुअल ऑपरेशन हब भी बनते जा रही है। सो वेल दिस इज कॉल्ड स्मार्ट प्लानिंग का रियल टाइम एग्जाम्पल। और जहां टाइमिंग की बात हुई है तो भाई टाइमिंग तो बता दूं आपको ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के, ये संडे टू थर्सडे रहेगा सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक। तो ये रही कतर की तरफ से एक अपडेट माइक से दिल तक आफरीन के साथ और मिर्ची। स्लोली सिर्फ फ्यूचर सिटी नहीं रहेगी, अब एक्चुअल ऑपरेशन हब भी बनते जा रही है। सो वेल दिस इज कॉल्ड स्मार्ट प्लानिंग का रियल टाइम एग्जाम्पल। और जहां टाइमिंग की बात हुई है तो भाई टाइमिंग तो बता दूं आपको ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के, ये संडे टू थर्सडे रहेगा सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक। तो ये रही कतर की तरफ से एक अपडेट माइक से दिल तक आफरीन के साथ।

0: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज।
1: गुड इवनिंग
0: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से।
1: ओके
0: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे। राइट फाइन। तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे। राइट सर। मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा वेट सर वेट,
1: ये इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
0: सर यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा। दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
1: डर जाएगी।
0: गुड सर, वेरी गुड सर।
1: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
0: सर, आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान।
1: नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
0: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं। पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले।
1: पूछो यार।
0: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
1: पूरे 100।
0: ग्रेट मिस्टर मनोज ग्रेट। सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर, पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
1: जेल में जाना पड़ेगा।
0: ग्रेट सर ग्रेट। रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
1: समझा नहीं मैं
0: बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा। मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था। जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो, दिस इज अ नोन फैक्ट ना कि प्लानिंग जितनी आप सही से करते हो उतना ज्यादा एग्जीक्यूशन सही से होता है। And well, my friends, this applies to weekend as well. Very good morning. आप सुन रहे Simply Afreen को, writer on Mirchi Mornings. और जब भी weekend आने वाला होता है या weekend होता है, तब आप ना आपकी जो planning है वो पहले से करके रखोगे ना, तो क्या time waste नहीं होता कि गाड़ी में बैठे फिर सोच रहे कहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, सोचने का नहीं, साफ decide करके आने का, क्या बोलते हैं। तो बस ऐसे ही यहाँ पर बता दूँ कि weekend पर हमारे कतर में क्या चला है, किधर किधर रौनक लगी है। Well, talking about Doha Exhibition and कन्वेंशन सेंटर की रौनक, पहले ये बता दूं भाई किताबों की रौनक वहां लगी है। दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर ये जो है वहां चल रहा है, टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और फ्राइडे को 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये तो हो गया किताबी कीड़ों के लिए। उसके अलावा शॉपिंग वॉपिंग करना हो तो और थोड़ा सा फ्रेश प्रोड्यूस लेना है तो तोरबा मार्केट ऑन द ब्रिज, ये बड़ा यूनिक लगा मुझे। मतलब तोरबा मार्केट हमारे कतर में होते रहता है, बट दिस टाइम इट्स ऑन द ब्रिज एट कनत कार्थियर एट द पर्ल आइलैंड, है ना। और इसकी जो डेट है, दिस इज हैपनिंग ऑन 16th of May। चलिए, ये हो गया। और उसके अलावा हमारा सर्कस तो चल ही रहा है, फुल फ्लेज चल रहा है और बड़ा सुपर डुपर हिट चल रहा है। अगर वो नहीं देखा अब तक है तो क्या मतलब, टिकट्स अगर आप बुक करके प्लान करके जाओ, फोंटाना सर्कस विच इज अ वाटर थीम सर्कस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द मिडिल ईस्ट, नॉट ओनली कतर, एंड दिस इज हैपनिंग एट हयात प्लाजा के टेंट में, ठीक है। ये है जो उसकी टिकट्स ऑनलाइन बिक रही है, तो आप वहां पर जाकर ले लीजिए। इट्स एट platinumlist.com। सो वेल, ये थी हमारी कतर की रौनक जो चल रही है आजकल। सो आप कहाँ जाने का सोच रहे हो इनमें से कुछ, या अपना ही कुछ और प्लान किया है, लेट मी नो। 5000196 इज माई नंबर। तब तक के लिए माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's hot. Mirchi stories.
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी
2: यार। तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100-0813।
2: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। MK आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अल वक्रा, अल जनूब गार्डन्स, ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424। MK आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सीलेंस।
3: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
4: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: पता है, रेत को जितना जोर से मुट्ठी में पकड़ के रखोगे ना, उतनी ही तेजी से वो हाथों से फिसलती जाएगी। और रिश्तों का भी ना कुछ ऐसा ही हिसाब है। वो क्या है ना, कभी कभी हम लोगों को रिश्तों को इतना होल्ड करके रखना चाहते हैं कि उन्हें सांस लेने की जगह ही नहीं देते। और इसी बात पे आज की डायरी से आफरीन की कुछ लाइंस बेस्ड है।
2: आफरीन की डायरी से शायरी।
1: तो जब इकबाल ने कहा था, उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजा में, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे किसी रोज, उस पर गालिब ने बड़ी सच्ची लेकिन एक कड़वी बात कह दी थी कि ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से इकबाल, ये ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो अपने भी आशियाना भूल जाते हैं। एक तरफ उम्मीद, एक तरफ तजुर्बा और जिंदगी शायद इन दोनों के बीच का सफर है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
6: Aray, whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Well, Aamir Khan and Alka Yagnik ki khubsurat si awaaz, and what a lovely track it is. Mujhe aaj bhi yaad hai ki ye gaana jo hai kahin na kahin hamare daur hamare zamane, nahi waise zamana to aaj bhi hamara hai, lekin agar 90s era ki baat karu, so it became a trend. All right, ek baar phir se aapki zindagi mein main aa chuki hu mithas and spice ke tadke ke saath. To shayad karte hain meethi mirchi ki shuruaat. Mirchi Anshu. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. And har din main jaldi aati hu, lekin maine socha ki aaj jo hai main kisi ko rok kar rakhun. Afreen, what's up?
1: Bilkul, matlab intezar bhai, hum thodi jayenge aapko tata bye bye sayonara kahe.
0: Absolutely.
1: So, intezar hi kar rahe the hum aapke. Kya hal hai Anshu? Fir
0: all good, yeah, going on well. Samajh hi nahi aa raha, pata hi nahi chal raha ki waqt jo hai kitni raftaar ki tarah bas aage badhte hi ja raha hai. And gradually dekhte agar dekhne ki koshish kare to mai ka mahina jo hai aadha almost pura hone ja raha
1: hai. अब लोगों की तो ईद की तैयारियां शुरू होगी क्योंकि अनाउंस हो चुका है ईद, मतलब एक्सपेक्टेड ही कहेंगे अब भी, लेकिन फिर भी ज्यादातर चांसेस यही है कि 27th मई को ईद होगी, ईद उल अदा.
0: सो 100%
1: एनी प्लान्स वेकेशन के
0: अधा ककेशन में इस बार ट्रैवल प्लान्स के हैं 27th ऑफ मई के आसपास. यार मैंने ना जेन्युइनली ये सोचा है कि हर बार जब छुट्टियां आती हैं कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि किसी और देश को एक्सप्लोर करने चले या कहीं और घूमने फिरने चले, लेकिन बचपन से ना मैंने एक बात सीखी है कि बाहर जाना इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक बार जो लाइफ में मिस हो जाती है कि हम जहाँ रहते हैं उस देश के कल्चर एंड ट्रेडिशन को समझना हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं. तो इस बार मैं कतर में हूँ, कतर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने वाली हूँ. तुम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस एंड रीजन की तरफ आगे बढ़ रही हो हज के लिए. एंड टुमारो इज द डे, द टी डे फॉर आफरीन, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड. वी विश यू ऑल द वेरी वेरी वेरी बेस्ट.
1: थैंक यू सो मच
0: येट अगेन. एंड ऊपर वाला पूरी पूरी तुम्हारी दुआएं जो है कबूल करें,
1: और
0: तुम्हारे साथ सबकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां रौनक जो है ना वो लेकर आए.
1: बिल्कुल.
0: चलिए जी, ये दुआएं तो हो गई. अरिजीत सिंह की आवाज में इस वक्त मीठी मिर्ची की शुरुआत करते हुए एक मीठा सा प्यारा सा गाना आपके रास्ते. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: हेलो
1: हेलो
0: यस
1: मोटर से बोल रहे हैं?
0: हाँ जी
1: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
0: ठीक है सर,
1: 5 सेकंड जल्दी।
2: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: प्लीज जल्दी बता दो।
0: हेलो
1: बात होल्ड नहीं कर सकता। हेलो
3: हाँ जी सर,
1: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
3: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
1: एक सेकंड
3: सर हैंड ब्रेक खींच दो। सर
1: एक सेकंड रुकिए
3: सर, साइड में लेफ्ट साइड में।
1: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
3: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
1: इग्निशन एक सेकंड रुकिए, ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
3: हाँ जी
1: एक सेकंड। सर कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
3: ऐसे मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
1: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
3: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
1: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा है, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
3: हाँ जी।
1: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
3: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
1: क्या करूँ?
3: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
1: एक सेकंड रुकिए।
3: क्या हो गया?
1: आए गाड़ी ठुक गई।
3: हैं?
1: गाड़ी ठुक गई।
0: Yes.
2: मैडम क्या नाम है आपका?
0: दिव्या।
2: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
0: Oh, I was so tense.
4: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot. In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.

Well, आदित्य अरखारिया श्रेया घोषाल की खूबसूरत सी आवाज़, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। मतलब नए गानों में नई रिदम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पुराने एहसास है ना, वो लौट कर वापस आ रहे हैं ना। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aryanshu with you. Well, zindagi mein mithas bhi hai saath hi spice bhi hai. Lekin ek baat bataun, ab jis exhibition ke bare mein main aapko batane wali hu, ye aapki life mein aisa sara ka sara kaam jo hai zarur karne wala hai. Well, I'm talking about 35th edition of Doha International Book Fair. That is 2026. वर्ल्ड 23rd of May तक चलने वाला ये एग्जीबिशन दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इस बार अपने ग्रैंडर में कहीं कोई कमी ना छोड़ेगा। अगर पार्टिसिपेशन को देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 36 कंट्रीज से ओवर 515 पब्लिशिंग हाउसेज आपको नजर आएंगे एंड इसके अलावा 900 बूथ्स। कैन यू बिलीव इट, ये तो बात हुई सिर्फ इसके ग्रैंडर की, लेकिन आखिरकार किताबों के अलावा आपको और कुछ क्या देखने को मिलेगा? चाहे मैं ऑथर टॉक्स की बात करूँ, लिटरेरी डिस्कशंस हो, वर्कशॉप्स हों, चिल्ड्रन एक्टिविटीज, हर एक एज ग्रुप के लिए सब कुछ कहीं ना कहीं जरूर है। तो भैया जाइए, अपने दिन को और भी खास बना के आइए। लेकिन यार, अगर हम इस वक्त किताबों की बात करने की कोशिश करें तो पता है मुझे ना एक बात लगती है, माना कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस हो चुकी है, हमारे पास AI समरीज हैं, ऑडियो बुक्स हैं, किंडल है, बहुत कुछ, लेकिन सबके बीच जो लोग फिजिकल बुक से ताल्लुक़ रखते हैं ये बात ज़रूर जानते हैं कि यार उसकी खुशबू, वो फ्रेश पेजेस की महक जो है ना, काफ़ी अलग है। जब तक हम कॉर्नर्स को फोल्ड कर वो इंपॉर्टेंट लाइन्स को मार्क ना करें, जब तक एक सूखा सा गुलाब उस किताब के बीच ना दबाएं, या कोई लेटर या कोई वो पुराना रैपर जब तक वो बीच से ना निकले, ना यार, किताबों का सफर जो है वो पूरी तरह से अधूरा है। कहते हैं ना कि किताबें जो होती हैं वो जिंदगी में कुछ खास रिश्तों की तरह होती हैं, जो अंदर से बहुत कुछ कह जाती हैं, चाहे बाहर से खामोश कहना। अग्रीड। चलिए जी, अगर बात में है दम तो फटाफट से 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल कुमार सानू की आवाज में एक बार फिर से 90s में डाइव इन करते हैं, नॉस्टैल्जिया को फिर से जीते हैं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

Well, Javed Ali ki khubsurat si awaaz, Kirti Sangathia ka saath, and what a lovely track this from the film Ranjana. Waise meri jo bhi kahani hai, meri jo bhi daastan hai, wo agar kahin hai, to bas tum tak. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Arjay Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. देखो यार, ये बात तो तय है कि मेरे अंदर जो भी है ना, जितनी खुशी है, जितनी बातें हैं, मैं बेसब्र होकर बस इस बात का इंतजार करती हूँ कि कब मेरी बातचीत एक बार फिर से आपसे हो एंड वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है, खजाना जो है, मैं आप तक पहुँचा सकूँ, पेश कर सकूँ. तो भाई, जब इतनी ज़्यादा कमिटमेंट मेरे अंदर आपके लिए, तो कहीं ना कहीं से वो रिफ्लेक्ट आपके इनसे भी तो होनी चाहिए ना. कोई नहीं, मौका मैं दूंगी. वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यू नो, एंड आई feel so privileged that I am a woman and I get paid for talking. And वो भी स्टूडियो की चार दीवारी में अकेले रह के बातें करना, बड़ा मजा आता है भाई. ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला. लेकिन हाँ, जब ये पता चल जाए ना कि कोई है जो आपकी इन बातों को ना ही सिर्फ सुन रहा है बल्कि बहुत अटेंटिवली ग्रास्प कर उसे एक्नॉलेज भी कर रहा है, तो खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है. तो चलिए, आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ये बताने का मौका आ चुका है. अब आपके बीच मैं पेश करने वाली हूँ एक सवाल. आपको सुनना है, समझना है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट आंसर एंड भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर. दैट इज 5000 1896 5000 1896. WhatsApp, we will get connected there and I would truly appreciate your audio message. Right, एक बार फिर से खूबसूरत सी म्यूजिक की दुनिया में हम डाइव इन करते हैं. कोई तो फिल्म है जिसकी थीम म्यूजिक है बड़ी प्यारी है. भाई, इश्क प्यार मोहब्बत पे यकीन रखते हैं तो यही म्यूजिक आपसे जरूर कनेक्ट करेगी. मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सुनिए, आइडेंटिफाई करिए एंड मुझे ये बताइए कि ये थीम म्यूजिक है तो है किस फिल्म से. 5000 1896. So, here we go.

ऑलराइट टीज़र जो है आपके बीच पेश कर दिया गया है, फटाफट से आइडेंटिफाई कर मुझे बताइए कि ये खूबसूरत सी धुन आपने सुनी तो किस फिल्म में सुनी। 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज़, सुकृति कक्कड़ का साथ, विशाल डिडलानी का तड़का एंड दिस टाइटल ट्रैक ऑफ पठान प्लेइंग राइट हियर ऑन मिर्ची। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
2: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
3: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
2: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
1: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
4: Khat khat.
5: Kaun hai?
4: Ishant.
5: Ishant kaun?
4: Ishant Gadadhari Bhim, Ishant.
5: Khat khat, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot. It's hot.

Well, Parampara Tannan ki khubsurat si awaaz, film ka naam Do Patti, and what a lovely and an interesting track it is. Sach kahun yaar, matlab heartbreak ki main baat karu, kuch aise gaane ki baat karu jo dil ko puri tarah se hila ke rakh de. To Do Patti film se jab ye gaana aaya, this is something that I can instantly connect and relate with. Nahi, mera koi heartbreak nahi hua, gaane aur emotion ki baat kar rahi hu. चलिए हार्ट ब्रेक से एक ऐसी जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं जो दिलों को जोड़ने का काम करता है. एक ऐसी धुन, एक ऐसी म्यूजिक जो कहीं ना कहीं मोहब्बत का सिनोनिमस बन गई. बस उससे जुड़ा हुआ सवाल अब से कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा. एब्सोल्युटली अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की थी किसी फिल्म की थीम म्यूजिक. आपको आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि थीम म्यूजिक है तो है किस फिल्म से. नाउ फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड, मैं एक बार फिर से आपको सुनाती हूँ. एंड अगर आपको लगे कि अभी भी सुनते सुनते आपने इस धुन को पहचान लिया है किस फिल्म से, तो मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर भेजिएगा 5000 1896 पर. 5000 1896, we will get connected there. Instagram Mirchi1 Kataria Mirchi Anshu. Right, you here you go.

0: क्या धुन है यार, क्या धुन है। मतलब पता है कुछ म्यूजिक ऐसी होती हैं जो आपको मजबूर कर देती है कि भाई तू प्यार में पढ़ अगर नहीं है तो भी पढ़। उनमें से ये एक जरूर है। देखिए लोगों का क्या कहना है, कौन सी फिल्म है ये।
1: गुड मॉर्निंग अंशु, दिस इज मुस्तफा फ्रॉम अमान को। ये मूवी का और ये म्यूजिक का फिल्म का नाम है मोहब्बतें, शाहरुख खान ऐश्वर्या राय। थैंक यू सो मच।
2: हेलो गुड मॉर्निंग अंशु जी, अभी जो आपने म्यूजिक बजाया है वो फिल्म है मोहब्बतें। मेरा नाम है शेख अजहर।
3: हाय अंशु, दिस इज शोएब हियर। दिस ट्यून इज बिलोंग टू मूवी मोहब्बतें।
4: This music from the movie of मोहब्बतें।
0: Well, absolutely, आप सबने जो कहा है, जितने लोगों ने लिख कर भी भेजा ये पूरी तरह से सही, तो सबसे पहले आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर रिप्लाई। ऑनेस्टली जब जब आपका जवाब आता है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। साल 2000 और बॉलीवुड को मिली एक ऐसी फिल्म जिसने प्यार को सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि रेबेलियन बना दिया। ऑनेस्टली एक तरफ थे नारायण शंकर, डिसिप्लिन रूल्स एंड परंपरा का दूसरा नाम, प्लेड बाय द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन, एंड दूसरी तरफ भाई हमारे राज आर्यन, वायलिन लेकर मोहब्बत का पैगाम देने वाले शाहरुख खान। एंड जब ये दोनों स्क्रीन पर आमने सामने आए तो ऐसा लगा जैसे आइडियोलॉजी वर्सेस इमोशन ना बैटल चल रही हो। फिल्म को डायरेक्ट किया आदित्य चोपड़ा ने एंड प्रोड्यूस किया यश राज फिल्म्स के बैनर के साथ। एंड म्यूजिक क्या टाइमलेस म्यूजिक है यार, बाय द आइकॉनिक डुओ जतन ललित एंड लिरिक्स बाय आनंद बख्शी। एंड हर एक गाना इस फिल्म का डायरेक्टली हमारे दिल पे उतरता है, इसमें कहीं कोई सेकंड थॉट नहीं है। अब चलिए इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, अगर ऐश्वर्या राय के कैरेक्टर यानी कि मेघा की बात करें तो ऑन स्क्रीन ये भले ही छोटा लगता है लेकिन आदित्य चोपड़ा को इस बात पे पूरी तरह से यकीन था। इनफैक्ट ही वो श्योर कि वो बहुत स्ट्रांग और इमोशनल होगा एंड दैट्स वाई शाहरुख खान का कैरेक्टर जो है हर वक्त मेघा की मेमोरी म्यूजिक साइलेंस एंड वायलेंट थीम्स के साथ लिए चलते हैं। एंड अब अगर हम बात करें शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन के इक्वेशन की, नाउ दिस वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मेजर फिल्म्स वेयर ऑडियंसेस ट्रूली सॉ टू जनरेशंस ऑफ सुपरस्टार कोलाइड इमोशनली। एंड ऑफ स्क्रीन शाहरुख का ये कहना है कि भाई अमिताभ बच्चन के साथ काम करना एक सपना तो था एंड साथ ही बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला एक्सपीरियंस था क्योंकि अमिताभ सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। एंड सबसे खूबसूरत बात, अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के म्यूजिक की यानी कि वायलिन थीम की, तो क्या आपको पता है ना ही सिर्फ ये लव का एक सिंबल बना, सिनोनिमस बना, लेकिन मोहब्बतें फिल्म के बाद वायलिन की सेल्स जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ी। इनफैक्ट बहुत सारे यंगस्टर्स में वायलिन को सीखने की इच्छा जो है ना वो और ज़्यादा जागृत हो गई। क्या बात है, शुद्ध हिंदी भी निकाल ली मैंने चलिए जी, तो कहीं ना कहीं जब ये धुन बजे तो मोहब्बत इश्क प्यार हमें फिर से हो ही जाता है। तो एक काम करते हैं, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक आपको सुनाई देते हैं, लता मंगेशकर की आवाज उदित नारायण का साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। एंजॉय। गाना पसंद आए तो थैंक यू जरूर बोलना। 5001896 व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं ठीक 11, एंड चलिए इस खूबसूरत से आवर की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में रिप्राइज्ड वर्जन ऑफ दिस आइकॉनिक ट्रैक। गाना सुनिए एंड अगर अच्छा लगे तो मुझसे कनेक्ट जरूर करिए 5000 1896। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु, बट फॉर नाउ एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची। बंदी का नाम अंशु।

0: वेल तुमका नाम बर्फी एंड व्हाट अ लवली एंड प्यारा सा गाना इट इज यार. प्रीतम ने क्या गजब की कॉम्पोजिशन दी यार. मतलब ये बंदा जो है म्यूजिक को मैजिकल करना बहुत अच्छी तरह से जानता है. लेकिन अगर इस गाने की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी खासियत अगर कुछ है अरिजीत सिंह ने जो मैजिक क्रिएट किया है उसके अलावा वो है इसके अल्फाज यानी कि इसके वर्ड्स. एंड सईद कैदरी ने जिस तरह से यू नो सईद कादरी साहब कहे जिस तरह से इसके शब्द लिखे ना भाई दिल पे उतरते हैं. ये बात जो है ये तय.
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. वेल आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड यार इससे पहले कि आज का पैसा क्या बोलता है इसकी कहानी मैं आपके बीच बयां करूँ, कोई तो बचपन की बात है जो मैं याद करना चाहूँगी. एक बात बताना, क्या बचपन के दिनों में आपके पास भी कोई गुल्लक हुआ करता था? आई स्टिल रिमेम्बर मेरे पास ना वो मिट्टी का गुल्लक हुआ करता था. एंड ये गुल्लक हमें हर साल 1 जनवरी 1 जनवरी को दिया जाता था. एंड उस गुल्लक का पर्पस जो है वो एक ही है कि जो भी हमें थोड़े मोड़े पैसे मिलेंगे, कभी 1 रुपये हमने दादाजी से ले लिए, कभी दादी से जिद करके 5 रुपये ले लिए, मम्मी पापा

0: क्या दिन थे यार. आज की डेट में जब सब कुछ इतना एडवांस्ड है, बच्चे भी इतने एडवांस्ड हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गुल्लक कम पिगी बैंक क्या आज भी लोगों के दिलों में वो जगह बनाए रखता है. या आज भी वो एक एक रुपए बचाना या उसे सहेज के रखना, बड़ों के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, वो पैसे इकट्ठे करना, क्या आज की जनरेशन में भी ये चाम होगा. आई फील दैट मैन. पता नहीं, हमने जो ज़िंदगी जी है ना, वो बहुत अलग जी है. एंड शायद हमारे दौर का जो फेज रहा है वो बहुत खूबसूरत रहा है. वैसे अगर आज के दौर की बात करूं तो भैया आज का दिन जो है वो पैसे के मामले में काफी अच्छा है. पता है क्या, बिकॉज आज का पैसा जो है वो बोल रहा है, बड़ा कमाल बोल रहा है. तो अगर आपके अकाउंट में आज पैसे हैं तो भैया तुम जो हो सही मायने में मालूम मालूम. अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो मोनरियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.19, एंड इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 77.03, बांग्लादेशी टाका 33.67, लंकन रुपीज 88.55, एंड नेपाली रुपीज एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पहुंचते हुए पहुंच चुका है 41.86 पर. बधाई हो जी जिनके पास पैसे हैं और जो आज ट्रांसफर कर रहे हैं उनको बधाई दे रहे हैं. हम जो है अपने लक का वेट कर रहे हैं, हमारे और पैसे आने वाले. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. बंदी का नाम अंशु.
1: लाया आई पे बेस्ट एक्शंस रेट्स, भेजो खुशियां और पैसे दोनों ही घर पे.
0: अच्छा सुनो, आपको ना एक ट्रेंडिंग गाना सुनाती हूँ. आपसे कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है फ्रॉम द फिल्म बैड्स ऑफ बॉलीवुड. अगर आपने सुना होगा तो आपको बताऊंगा, बड़ा ही एक्साइटिंग है. और अगर नहीं सुना, अरिजीत सिंह या नमीरा गिल की आवाज़ में बड़ा क्लासी सा ट्रैक है, इससे कनेक्ट करने की कोशिश करना. और अगर गाना अच्छा लगे ना तो मुझे बताना जरूर. 5000 1896. आई विल वेट फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु. फॉर नाउ एंजॉय.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ मेरी
2: मैं बोल रहा हूँ
3: हाँ जी भाई संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ आपको थाना आना पड़ेगा
2: क्यों
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर आपने धरने पे बैठे थे आप
2: जी बैठे थे
3: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था सबके लाठियाँ पड़ी थी आपके रह गई हैं आपकी तीन लाठियाँ लगनी है यहाँ आके लगवा लो जल्दी से
2: हाँ बताओ जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे
3: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा मैं ये नहीं जानता जस्टिस आप वहाँ पे गए थे आप इस बात को मान रहे हो
2: जी जी गए थे जी
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे
2: जी जी
3: आपके पड़ी लाठी कोई
2: मेरे तो नहीं पड़ी
3: वही तो मैं कह रहा हूँ आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी आपके पड़ी नहीं आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से
2: सर आप नाराज क्यों
3: नहीं नाराज क्यों की बात है बताइए हाँ बताओ
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था मैं बहुत दूर था जहाँ लाठी
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई बहुत दूर थे भाई इतने मैं यही तो कह रहा हूँ बहुत दूर खड़े थे आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगते
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार आप बच गए तीन लाठियां रजिस्टर पे चलाइए अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
2: सर नाराज क्यों है मैं
3: नहीं
2: तो
3: नाराजगी की तो बात है
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया
3: तो अब मैं आपसे मैं भी आपका दोस्त हुआ आपको आ जाओ तीन लाठियां मारेंगे आपके छोड़ देंगे आपको यार क्या परेशानी है वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई जल्दी आ जाओ भाई यार
2: नहीं
3: यार नहीं नहीं यार मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप हैं मेरे को तमीज सिखा रहा मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई इस बात समझ में नहीं आ रही लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है
2: वो
3: बहुत दूर था
2: नाराज
3: वाली बात है यार ओके चलो लाठी मत करो लाठी नहीं मारेंगे मुर्गा बन जाओ संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तुम अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स जबरदस्त ट्रैक्स कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
4: FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: Well, फनी खान से ये पावर पैक गाना तो मैंने इस वक्त आपको सुनाया, लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा हार्ट को मेल्टडाउन करने की कोशिश करते हैं। वो रितिक सिंह की आवाज़, फिल्म का नाम ए दिल है मुश्किल, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फीचरिंग रणबीर कपूर एंड अनुष्का शर्मा। ये गाना एंजॉय करिए, फिर अब से कुछ देर में एक बहुत ही खास बात है जो मैं आप तक पहुँचाऊंगी। एंजॉय, बन्नी का नाम अंशु।
1: अच्छा।

को मतलब जब जब प्रीतम अमिताभ भट्टाचार्य साथ अरिजीत सिंह आते हैं ना, आप देखना उस गाने का मैजिक जो है वो कुछ इस तरह से हमारी जिंदगी में असर छोड़ता है भाई कि ना उस गुमान से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। व्हाट अ मैजिकल एंड अ लवली ट्रैक इट इज। ये गाना न जाने कितने सालों से हम सुन रहे हैं एंड आज भी जब हम सुनते हैं ना एक अलग वाइब जो है वो जरूर महसूस होती है। नहीं मुझे तो पक्का होती है। अपनी दास्तां बयां कर रही हूं मैं। आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी बात बताती हूँ जो अक्सर मुझसे मेरे पापा कहा करते थे। यू ना कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे रास्ते क्यों आ रही हैं, मैं जब से कोशिश करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर वो रिजल्ट जो है वो मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा, सब कुछ ऐसा क्यों है यार, औरों की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, औरों की ज़िंदगी इतनी प्यारी है। यार लाइफ ना आपके रास्ते जो भी चैलेंजेस लेकर आती है, थोड़े ज़्यादा होंगे, कई बार बहुत ज़्यादा कठिन होंगे, वो इसीलिए लेकर आती है क्योंकि वो जानती है आप उसे हैंडल कर सकते हैं। ज़िंदगी आपको उतना चैलेंज देगी ही नहीं जो आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड होगा। अगर आपके रास्ते ज़्यादा कुछ आ रहा है तो समझ जाएं कि कुछ तो है जो अभी भी सीखना बाकी है, कुछ तो है, कुछ तो पुरानी बात है या पुरानी कोई गलती है जिससे अभी तक हमने सीख जो है ना लिए, इसीलिए ये चैलेंज के तौर पे ना इस वक्त हमारे बीच आ रहा है। जिस दिन वो बात समझ में आ गई ना, देखना हर्डल्स जो हैं कुछ उस तरह से हटेंगे एंड उसके बाद आपके गोल्स, पर्पस, मिशन, विजन सब कुछ जो है ना उसका रास्ता एकदम क्लियर साफ नज़र आने लगेगा। तो चैलेंजेस जब लाइफ में आए तो इतना समझ जाना कि आपको चुना गया है क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप उसे बेयर कर सकें, उसके बियॉन्ड आपको कभी कोई तकलीफ देगा ही नहीं। यार ऊपर वाले में बहुत दम है, हमारी ज़िंदगी को सही तरह से चलाना, हमें रास्ता दिखाना या तो हमें सही तरह से चलना कैसे है ये बताना वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। और वो कहते हैं ना, जिंदगी मांगती है तुमसे उतनी ही शक्ति जितनी की तुम में है। ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी मांगती है तुमसे उतनी ही शक्ति जितनी की तुम में है, अगर तुम 6 दे सकते हो तो वो 7 नहीं मांगती, तुम शाम दे सकते हो तो वो प्रभात नहीं मांगती। प्रभात यानी कि सुबह, तो अगर आप शाम दे सकते हैं तो जिंदगी आपसे सुबह नहीं मांगती, और अगर आप 6 दे सकते हैं तो जिंदगी कभी आपसे 7 नहीं मांगती। तो बस इसी पॉजिटिव थॉट को ज़िंदगी में ना अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर बात अच्छी लगी तो एक वो थम्सअप या थैंक यू मैसेज हो जाए। 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम Mirchi1 कतरिया Mirchi Anshu। मीन वाइल पेपॉन की आवाज़, फिल्म का नाम सुल्तान, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जो मेरा काफ़ी फेवरेट है, आप तक पहुँचाती हूँ। एन्जॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Well, Udit Narayan and Alka Yagnik ki khubsurat si awaaz. And what a lovely track it is featuring the pretty, pretty Zinta. And I'm talking about Saif Ali Khan. And iske saath ye film ka naam Kal Ho Na Ho.
1: Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, aapki zindagi mein mithas and spice jo hai, dono hi ek saath lane ka kaam main har din kar hi deti hu. Chaliye ek kaam karte hain. Ab Qatar ki ek aisi khoobsurat si jagah jahan pe spices bhi hain, jahan pe dher sari mithas bhi, bahut sare emotions bhi hain, wahan par aapko lekar chalte hain. Un galiyon ka zara rukh jo hai hum karai le. Are kis gali ki baat kar rahi hu main? Har baat main bata du to aap kya karenge? Kuch na kuch to aapko bhi karna hai na. Non-stop baatein karne ka kaam to main kar rahi hu. Ab itne pyar se jab aap mujhe sun rahe hain तो आप उसका कुछ ना कुछ जवाब तो दे ही दे यार. आपका जब जवाब आता है ना तो खुशी होती है, बहुत खुशी होती है. आई वेट फॉर योर करेक्ट आंसर्स. लेकिन कहाँ 5000 1896 5000 1896. वी विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज. तो भाई एक पहेली है कतर से जुड़ी हुई जो मैं आपके बीच पेश कर रही हूँ. बुझाना है, पहचान कर ये बताना है ये जगह है तो कौन सी जगह है. चलिए, कतर की एक ऐसी जगह जहाँ जाते ही लगता है कि टाइम मशीन में आ गए हम. जहाँ इत्र की खुशबू है, अरबिक कॉफी का स्वाद है, फाल्कन्स भी हैं एंड स्ट्रीट की वो वाइब भी है. यहाँ शॉपिंग भी होती है, फोटोग्राफी भी होती है एंड हर एक टूरिस्ट की आइटिनरी में ये जगह पक्की होती है. ये बस वही जगह है जहाँ ट्रेडिशन एंड कल्चर की मुलाकात अगर किसी से होती है तो वो है मॉडर्निटी से. अब कतर की वो कौन सी जगह है जिसकी इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, जल्दी से बताएं. 5000 1896. आई विल वेट फॉर योर मैसेज देयर. एंड अब जो है जैस्मिन सैंडलस की आवाज़ सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन में ये पावर पैक गाना सुनाती हूँ एंड उसके बाद सिल्क रूट का एक प्यारा सा गाना सुनाऊंगी. पता है कौन सा? ये वाला.
1: डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी.
0: ऑलराइट, तो एक बार फिर से 90s में हम डाइव इन करेंगे लेकिन अभी जैस्मिन सैंडलस सचिन जिगर का तड़का एंड ये पावर पैक गाना. एंजॉय. बिंदी का नाम अंशु.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खटखट
5: हू दैट?
4: जाहिर।
5: जाहिर जाहिर हूँ,
4: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
5: खटखट हू दैट
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

वेल, सुनिधि चौहान की आवाज एंड व्हाट अ पावर पैक ट्रैक इट इज, दिव्य कुमार का क्या गजब का तड़का। लेकिन हाँ, पुरानी चीज को नए तौर में कैसे पेश करना है, इस गाने ने तो हमें ये बताया। लेकिन कोई जगह है जो इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से बयां करती है।

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड साथ ही उस जगह की कहानी भी अब बयां करने की बारी आ चुकी है जिसकी पहली मैंने आपसे कुछ देर पहले आपसे पूछी थी। लेकिन ना ना, ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं। वेल, एक बार फिर से मैं आपके सामने पहली पेश करूंगी। अगर लगे कि अभी भी सुनते सुनते आपने करेक्ट आंसर पहचान लिया कि ये कतर की कौन सी जगह की कहानी बयां कर रही है, तो फटाफट से मुझे करेक्ट आंसर भेजिएगा 5000186 पर, 5000186। बाकी तो मैं बताऊंगी कि आवाम जनता ने क्या ही कहा है। पल कतर की एक ऐसी जगह जहां जाते ही लगता है जैसे टाइम मशीन में हम आ ही गए, जहां इत्र की खुशबू है, अरबिक कॉफी का स्वाद है, फाल्कन्स भी है एंड स्ट्रीट की वो मैजिकल वाइब भी है, यहां शॉपिंग भी होती है, फोटोग्राफी भी होती है एंड हर टूरिस्ट की आइटिनरी में ये जगह पक्की होती है। तो बस ये बताना है कि ये जगह है तो है कौन सी।
1: Hey RJ Anshu, this is Madhulika calling. I think आप जिस जगह की बात कर रही हैं वो है सूक वाकिफ। Thank you.
2: Hello, good morning madam. वो जगह का नाम है सूक वाकिफ।
3: Good morning Anshu, ये जगह है सूक वाकिफ। सूक वाकिफ की वो गलियां जहाँ पे सब कुछ मिलता है। Thank you, it's hot. This is Kumar Pandey.
0: Well, absolutely, आपने जो कहा ये पूरी तरह से सही है। I'm talking about the standing market, यानी कि सूक वाकिफ। सूक का मतलब मार्केट, वाकिफ का मतलब स्टैंडिंग। लोग खड़े खड़े यहाँ सामान तो बेचा करते थे, लेकिन सही मायने में मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर आकर लोग एक दूसरे से वाकिफ भी हुआ करते थे। देखिए, सूक वाकिफ की हिस्ट्री, इसका रिस्टोरेशन, ये सब तो मैंने आपके बीच कई दफ़ा पेश किया। आज इसके बारे में कोई और दूसरी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आप तक बताती हूँ। देखिए, अगर सूक वाकिफ को देखें तो यार हम सभी वहाँ ज़रूर गए हैं। वहाँ पे हमने करक पी है, लेट नाइट वॉक्स की हैं, फोटोज ली हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सूक वाकिफ में एक लेजेंडरी पर्ल शॉप भी है, पहलवान साद इस्माइल अल जासम द ओल्ड पर्ल डाइवर, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और इस शॉप की सबसे खास बात, ये सिर्फ पर्ल्स की शॉप नहीं है, ये कतर के पुराने वक्त की कहानियों का एक जिंदा एहसास है। इस शॉप के ओनर उन लोगों में से एक हैं जो खुद समंदर में उतरकर मोती निकाला करते थे, लॉन्ग बिफोर ऑयल एंड गैस ट्रांसफॉर्म कतर इंटू वट इट इज टूडे। सो इमेजिन दिस, आज हम एसी मॉल्स इन लग्जरी लाइफ देखते हैं, लेकिन एक वक्त था जब कतर की इकोनॉमी पर्ल डाइविंग पर चलती थी और सूक वाकिफ उन मोतियों का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग हिस्सा हुआ करता था, पॉइंट हुआ करता था। एंड ऑनेस्टली दैट्स द ब्यूटी ऑफ सूक वाकिफ। यहाँ सिर्फ शॉपिंग नहीं है यार, ये वो जगह है जहाँ हिस्ट्री मिलती है, कल्चर से, एंड कहीं ना कहीं हम जो है आज उस इमोशन से कनेक्ट कर पाते हैं। एंड अगर खासकर कतर के स्पाइस मार्केट की बात करें तो भाई सूक वाकिफ की गलियाँ और वहाँ वो महक, वो खुशबू, इसका मतलब कंपेरिजन किसी से हो ही नहीं सकता। एंड अगर आप फ्रेग्रेंसेस को देखने की कोशिश करें तो चाहे इंडिया हो, पर्शिया हो, अफ्रीका हो, सेंचुरीज ओल्ड ट्रेड रूट्स की एक महकती हुई याद आज भी सूक वाकिफ की गलियों में आपको जरूर महसूस होती है। ओरिजिनल ऑथेंटिक आपको डेट्स चाहिए या तो फिर मैं कहूँ आपको शहद चाहिए, ये सब कुछ यार, हर गली की अपनी एक अलग खुशबू है, हर गली सूक वाकिफ की अपनी एक अलग दास्तां बयां करती है। अच्छा, आप भी कभी ना कभी सूक वाकिफ गए होंगे, क्या आपको लगता है ऐसा कोई एरिया है वहाँ पर जो मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए? बहुत कुछ है। Now, is there something that you believe that I must certainly and definitely explore? Let's say, assume if I have not. Let me know about it, yaar. Mujhe janna hai. 5000186. 5000186. Let's get connected there. Instagram, Mirchi1, Qatar ya Mirchi Anshu. Meanwhile, Aditi ki awaaz, any chance si waliyan aapke raaste. Enjoy, Pandi ka naam, Anshu.

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी फरमाइए। बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

मिर्ची एंड दिस इज आर्यांशु विद यू। मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 12:02। इस खूबसूरत से आवर की करते हैं शुरुआत अदनान सामी की आवाज में। नॉस्टैल्जिया में आपको लेकर चलती हूँ, बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक है, मुझे बहुत पसंद है, अगर आपको भी अच्छा लगे तो मुझे बताना जरूर। 5000186 वेट फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। मीनवाइल एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची। बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

What a lovely track यार, मतलब यार वो दौर और उस दौर के वो गाने, हम जो सीडी एंड कैसेट के एरा या जमाने में जिए हैं ना, उसकी बराबरी, उसका मुकाबला कुछ और हो ही नहीं सकता।

0: यार सच कहूँ, हमारा जो दौर, हमारा जो वक्त है ना, वो काफ़ी अलग था। उस समय के गाने, वो ज़िंदगी जीने का तरीका, सब कुछ काफ़ी अलग है ना। लेकिन पता है रेडियो की सबसे खूबसूरत एंड ख़ास बात क्या है, क्योंकि आज भी वो आपको कहीं ना कहीं वो पुराने दौर से कनेक्टेड रखता है। इमेजिन करें कि आज जो है आप इतने इनोवेशन के बीच जी रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं, अचानक से एक ऐसा कोई गाना बजे जो आपको 90s की याद दिलाए, 80s की याद दिलाए। आप करंट वर्ल्ड में जीते जीते उन दौर को, उस दौर को, उस वक्त को एक बार फिर से जी ही पाते हैं। इसीलिए तो रेडियो का जो एक्सपीरियंस है ये हमेशा मैजिकल होता है, जिसका कंपैरिजन किसी और से किया ही नहीं जा सकता। हैविंग सेड दैट, अगर कंपैरिजन की बात करें भाई, तो इन जनाब का जो पावर, हुनर एंड असर इस वक्त हमारी लाइफ में है ना, इसका भी कंपैरिजन आप किसी से नहीं कर सकते, ये बात तो तय।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: हे, वेलकम बैक। अगर इस वक्त मौसम के हालचाल को बताने की कोशिश करूं तो भाई अपनी चरम सीमा में ग्रेजुअली पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी अराउंड 40, फाइनली 40 का ये आंकड़ा जो है इसने टच कर ही लिया, एंड मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 30। अब किसकी उम्र बता रहा है, किसकी ओर इशारा है, ये तो मुझे पता नहीं, बट इतना ही कहना चाहूंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें यार, खूब ख्याल रखें। वैसे ना गर्मी के दिनों में हमारे घर में एक ट्रेडिशन हुआ करता है जो अक्सर बनता है, एंड यहाँ पे अवेलेबल है, सो इवन यू कैन ट्राई। आई एम टॉकिंग अबाउट बेल का शरबत, बेल फ्रूट। यू नो, बेल के शरबत को निकाल कर उसे, यू हैव टू क्रैक ओपन बेल फ्रूट एंड उसके पल्प को निकालना है, उसे काफ़ी देर तक पानी में भिगो के रख देना है, मान ले एक घंटे के लिए, कई लोग 20-30 मिनट के लिए भी रखते हैं। एंड बस उस पल्प को फिर अच्छे से स्क्वीज कर उसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद छान लेना, एंड मिश्री होती है ना जो धागे पर आती है, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ मिश्री, वो मिश्री को मिलाकर अगर आप उस पर पियेंगे तो ये काफ़ी ठंडक देता है एंड इज़ रियली फ्रूटफुल। तो बेल का शरबत जो है आप ज़रूर ट्राई करें, इंश्योर करें कि आप जो है राइप यानी कि जरा पका हुआ बेल ला रहे हैं। इट इज़ अ लिटिल हैवी, अगर आप छूके देखेंगे आपको समझ में आएगा, वजन से समझ में आएगा कि हाँ भाई ये पक गया है, एंड अंदर से ये पिंकिश निकलता है अगर ये पक गया है तो। क्या आपके घर में बेल फ्रूट का शरबत बनता है, कभी बना या कतर में आपने कभी ट्राई किया, मुझे बताना यार। 5000189 6, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। या तो फिर वो कौन सा ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो अक्सर समर्स में आपके घर पर बनाया जाता है, मुझे ये भी बताना, ठीक है। वैसे वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
2: Weather Check, brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। For bright future, call now 3100813।
0: देखो जिंदगी में ना ये बेहद जरूरी है कि हम जो हैं हमेशा खुश रहें एंड हमेशा अच्छा सोचें, चाहे वक्त कैसा भी हो। वक्त की खास बात यही तो है, गुजर ही जाता है, एंड अच्छा सोचते हैं हमेशा उड़ान भरते हैं। तो ये अगला गाना आपके लिए, मेरे साथ हवाओं पे चलें, क्या कहती पब्लिक।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
2: फोर.
3: वेट सर, वेट.
2: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है
3: सर? यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी.
3: गुड सर, वेरी गुड सर.
2: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
3: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
2: पूछो यार.
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
2: पूरे 100.
3: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माँ भाई पोषण पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा.
3: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं.
3: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
5: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

ये खूबसूरत सी आवाज़ प्रीतम की कॉम्पोजिशन एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फ्रॉम द फिल्म हॉलीडे. साल 2014 में रिलीज हुई ये फिल्म, जिसमें अगर आपको ये नजर आए तो वो है अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा. चलिए जी, ये प्यारा खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस रीलोकेशन की खबर जरा आप तक पहुँचा दी जाए. आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ, एंड कोई तो रिलोकेशन की खास खबर है जो मुझे इस वक्त आप तक पहुँचानी है. वेल, अगर इस वक्त मैं बात करूँ जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक की, तो उन्होंने बस यही बताया है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है ट्रैफिक का, इस वक्त मूव हो चुका है मदनत खलीफा से लुसैल एरिया में. बिल्कुल, ये ध्यान रखिए, तो अगर लगे कि कभी भी ट्रैफिक से रिलेटेड कोई काम है, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को विजिट करना है, अब जो है मदनत खलीफा ना पहुंचेगा. अगर कहीं जाइएगा तो वह लुसैल एरिया. तो ये हो गया एक जनरल नॉर्मल अपडेट. लेकिन अगर रिलोकेशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी कितनी कमाल, कितनी खूबसूरत है ना. अगर हम अपनी ही लाइफ को देखने की कोशिश करें तो कितनी सारी जगहों से, कितनी सारी बातों से हमने रिलोकेट किया है. ट्रांजिशन ही अगर आप देखें, वो स्कूल से ट्रांजिशन कॉलेज का फेज, जब हम कहीं हॉस्टल में जाते हैं, किसी नई जगह रहने जाते हैं, वो एक रीलोकेशन हमारे साथ कितनी सारी नई यादें लेकर आता है ना. मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है, जब इंजीनियरिंग के समय मैं हॉस्टल जाने वाली थी, दिल में ना बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल थे. घर वालों को छोड़ के जाना, वो मम्मी की एक आदत सी है ना, सुबह उठते ही मम्मी का वो डांटना, उठो नहीं तो लेट हो जाओगे, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट एक्स्ट्रा सोना, यू नो, मम्मी का पीछे पीछे दूध की ग्लास लेकर भागना कि बेटा तू कुछ खा ना खा, लेकिन बस दूध पी ले, ये सफिशिएंट है. कोई भी ख्वाहिश हो, कोई भी डिज़ायर हो, बस पापा को एक कॉल कर दो, इन पता होता था वो काम जो है बस हो ही जाना है, मम्मी से ना वो पापा तो चुपचाप लाके दे ही दे देंगे. वो दादा दादी का प्यार, सब कुछ कितना डिफरेंट है ना. तो वो एक रिलोकेशन. उसके बाद आप हॉस्टल लाइफ जीते हैं, एक नई जिंदगी में एंटर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजा, सब कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस. फिर वहां से जब कॉलेज पूरा हो, फिर से रिलोकेट करना है, कहीं जॉब करने जाना है, कहीं फिर से बाहर जाना है, एक अलग सी कसक, लेकिन हाँ साथ में ढेर सारी खूबसूरत यादों का वो पिटारा. एंड उसके बाद अगर रिलोकेशन की बात करूं तो जिंदगी में सबसे बड़ा तब होता है जब कभी शादी हो जाए. एंड आज के डेट में तो मैं कहती हूँ यार, सिर्फ लड़कियाँ रिलोकेट नहीं होती भाई, अक्सर जो है कहीं बाहर काम करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेन और वुमेन, जो घर के बाहर हैं भैया, आप सभी की विदाई तो जो है वो हो ही रही है, वो एक रिलोकेशन. और हम सब जो यहाँ कतर में मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगी की कहानी कितनी अलग है ना. हम जिस जिस देश से आते हैं आज अपने करियर को बनाने के लिए, प्रोफेशनल रीजन से, ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए, आज जो है हम कतर रिलोकेटेड हुए हैं. एंड ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, बहुत हसीन है, हमें बहुत सारी प्यारी यादें दी हैं, लेकिन एक दिन जब यहाँ से जाना होगा तब एक अलग ही बात होगी, है ना. पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की जो गाड़ी है हमेशा चलती रहती है, हर जगह जब हम नई जगह पर पहुँचते हैं ना कोई खूबसूरत याद का एक पिटारा अपने साथ लेकर चलते हैं, जो हमेशा हमारे साथ महफूज होता है. अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपकी लाइफ की सबसे खूबसूरत रीलोकेशन स्टोरी कौन सी है? फॉर मी इट वॉज कॉलेज टू हॉस्टल, सॉरी स्कूल टू हॉस्टल लाइफ. हाउ अबाउट यू? 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल शान की आवाज़ श्रेया घोषाल का साथ, यानी अगला गाना एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, Kiki ki awaaz, and what a lovely and a beautiful track it is from the film The Train and Inspiration featuring Imran Hashmi and Geeta Basra. Bas yahi gaana tha jab Geeta jo hai kisi cricketer ke dil mein iske baad basi gayi thi.
1: Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu.
0: अरे हमारे हरभजन पाजी की बात कर रही हूँ. चलिए गीता जो है उनके दिल में हमेशा के लिए बसी गई. उनका रिश्ता जो है वो भी बसी गया. हैविंग सेड दैट, कोई तो बात है, कोई तो डायलॉग है, कोई तो सीन है जो मेरे दिल में पूरी तरह से बस गई. एंड ये बात जो है ना जिंदगी में मैंने गठान बांध के रखी है. इनफैक्ट ये एक फिल्म ऐसी है जिसकी इतनी सारी बातें हैं कि अगर एक बार गौर से ध्यान से इस फिल्म को एंटरटेनमेंट नहीं लेकिन लाइफ लेसन के तौर पर आप देखने की कोशिश करेंगे ना तो समझ में आएगा इस पिक्चर ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया. अब ये कौन सी फिल्म है ये मैं तो बताऊंगी नहीं. ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आधी अधूरी बातें करना मुझे बड़ा मजा आता है, खासकर जब पहचान कौन ये वाला सेगमेंट जो है वो चल रहा हो. तो आप कोई तो बहुत ही स्पेशल सी फिल्म है, उसका एक बहुत ही काम का डायलॉग है जो राइट नाउ मैं आपके बीच पेश करूंगी. आप सुनेंगे, पहचानेंगे, मुझे ये बताएंगे ये फिल्म है तो है कौन सी, एंड ये जो पते की बात कह रहे हैं ये आखिरकार कौन से एक्टर हैं. करेक्ट आंसर एज यूजुअल आई वुड बी एक्सपेक्टिंग ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर दैट इज 5000 1896 5000 1896. वी विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची आंशु. बट फॉर नाउ हियर यू गो.
2: जिंदगी एक जिग्सो पजल की तरह है, यू नो वो पजल जब हम बचपन में खेलते थे तो मेरे जैसे लोग उस पजल के खोए हुए टुकड़े पीसेस सिर्फ ढूंढने और जोड़ने में मदद कर सकते हैं. ओनली यू कैन कंप्लीट द पजल.
0: हाय क्या बात है यार, कितनी खास, कितनी खूबसूरत और कितनी सही बात. अब ये बताएं ये पजलिंग सा सवाल जो है मैंने आपसे पूछा है लेकिन ये कौन सी फिल्म का पजल सॉल्व कर रहा है. 5000 1896. डोंट गेट पजल्ड. गौर से सुनेंगे तो आवाज़ पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है और ये डायलॉग पहचानना और भी मुश्किल बात नहीं है. 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ईगरली. फटाफट से करेक्ट आंसर भेजें. वेल किसी ने रिप्लाई किया, एक बार और भेज दीजिए. ठीक है जी, चलिए एक बार और सुना देते हैं.
2: पजल की तरह, you know, वो पजल जब हम बचपन में खेलते थे तो मेरे जैसे लोग उस पजल के खोए हुए टुकड़े पीसेस सिर्फ ढूंढने और जोड़ने में मदद कर सकते हैं. ओनली यू कैन कंप्लीट द पजल.
0: Absolutely, only you can complete the puzzle. जितने इसके pieces थे इर्द गिर्द मैंने आसपास लगा के छोड़ दिए. Puzzle तो आपको ही complete करना है ना, and मुझे सही जवाब भेजना है. 5000 1896 waiting for your messages. Instagram मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. Meanwhile राघव की आवाज़, तनिष्क बाख्शी एंड असीस कौर का साथ, एंड मेरी बातों में आपका जिया उलझा. नहीं यार ये तो गाना कह रहे हैं. Enjoy.

0: Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
2: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Cut, cut.
5: कौन है?
4: दवे.
5: दवे कौन?
4: The way you love me. I hai mar jawa.
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: Well, Pankaj Udaas ki khubsurat si awaaz and what a lovely, beautiful track it is. Kya iconic si ye ghazal yaar. Aur aahista kijiye baatein. And this video mein Sameera Reddy kya kamaal lagi hai, kya khubsurat lagi hai. And saath hi ye jo duo hume nazar aaya, wo Firang and saath mein Sameera, hai dil ko chhu lene wali kahani jo hai na, is song ne puri tarah se depict kiya. Vaise this video was directed by the famous duo Radhika Rao and Vinay Sapru, jo bahut hi zyada famous hua karte the ghazab ke direction ke liye. Badhiya ji. चलिए ओ हेनरी की जो क्लासिक स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, बस इसी स्टोरी पे पूरा का पूरा बेस्ड एंड फिल्माया गया कहना चाहिए ये गाना. ये तो मैंने आपको सुना दिया, अब कोई खास कहानी आपके बीच पेश हो जाए. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ. एंड बस जो डायलॉग अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश किया था उसका सही जवाब बताने का वक्त आ चुका है. तो बस एक आइकॉनिक सा डायलॉग मैंने आपको सुनाया था, आपको आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था ये किस फिल्म से. जल्दी से एक बार फिर से सुना दिया जाए.
1: जिंदगी एक जिग्सो पजल की तरह है, यू नो, वो पजल जब हम बचपन में खेलते थे तो मेरे जैसे लोग उस पजल के खोए हुए टुकड़े पीसेस सिर्फ ढूंढने और जोड़ने में मदद कर सकते हैं.
0: Absolutely, यार, जिंदगी की पजल तो हमें खुद ही कंप्लीट करनी है. अब देखें लोग क्या कहते हैं कि कौन सी फिल्म है.
2: हेलो आरजे अंशु, दिस इज मधुलिका कॉलिंग. ये जो डायलॉग है ये शाहरुख खान का बोला हुआ है एंड द मूवी इज डियर जिंदगी. आई होप आई एम राइट, थैंक यू.
3: हेलो राजे मिर्ची, अंशु हाउ आर यू, माय नेम अली विजदान. दिस वाज शाहरुख खान मूवी मे बी स्वीडिश.
4: हाय अंशु जी, ये मूवी है डियर जिंदगी जिसमें अपने लेजेंड सर शाहरुख खान जी थे और साथ में आलिया भट्ट भी. सही है. और ये शाहरुख जी आलिया भट्ट को काउंसिल करते हुए डायलॉग सुनाते हैं, उनको सिखाते हैं. बहुत बढ़िया अंशु जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. एक बात कहना चाहूँगा, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया.
0: Wow, sweet, yeah. Thank you so very much. I really, really appreciate it. Absolutely, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया. हम छत्तीसगढ़ से हैं तो ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, जानकर भी अच्छा लगा कि आप छत्तीसगढ़ से ही हैं. Having said that, to all the people who regularly participate in the show, thank you. It really, really means a lot to me. Now, coming back to this beautiful film, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई, जिसमें हमें नजर आए द किंग खान यानी कि शाहरुख खान एज डॉक्टर जहांगीर खान यानी हम सबके फेवरेट जग एंड आलिया भट्ट एज काय एक यंग गर्ल जो लाइफ करियर रिलेशनशिप और खुद से स्ट्रगल कर रही हो. इस फिल्म को डायरेक्ट और राइट किया गौरी शिंदे ने, द सेम ब्रिलियंट फिल्म मेकर जिन्होंने इंग्लिश विंग्लिश भी बनाई थी. एंड ऑनेस्टली डियर जिंदगी की जान उसके डायलॉग्स थे, सिंपल रिलेटेबल एंड डायरेक्टली दिल तक पहुंचने वाले. इनफैक्ट फिल्म के मैक्सिमम डायलॉग्स यानी कि लार्जली अगर किसी ने लिखा तो वो है गौरी शिंदे ने खुद. शायद इसीलिए फिल्म जो है ना इतनी रियल लगती है, क्योंकि डायरेक्टर जब फिल्म को खुद महसूस करने लगे ना तो भाई किस्सा कहानी जो है पूरी अलग जाती है. इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गौरी खान, करण जौहर एंड गौरी शिंदे ने. पता है इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कमर्शियल सिनेमा होते हुए भी थेरेपी एंड मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स को इतने ब्यूटीफुली एंड सेंसिटिवली लेकर आई दैट पीपल जेन्युइनली कनेक्टेड विद इट. बाकी सारी बातें तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक डायलॉग इस फिल्म का जो मैं शायद कभी ना भूलूं एंड हर वक्त जो मेरे साथ रहता है वो बस यही है, डोंट लेट योर पास्ट blackmail your present to ruin a beautiful future. All right, इसी खूबसूरत से thought के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. इतना ही कहना चाहूँगी, जिंदगी को दिल से जिए, मस्ती से जिए, खुश होकर जिए, क्योंकि जो है इस है इसी वक्त है और इसी पल है. इसी फिल्म से ये अगला प्यारा सा गाना आपके लिए, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय. मसला महबीबी जसलीन रॉयल एनी गाना आपके लिए.

0: बचपन का एक हमारा बड़ा पेट डायलॉग हुआ करता था, बस थोड़ी देर और प्लीज। ये थोड़ी देर और प्लीज आज भी हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. You know, बचपन में जब हम खेला करते, थोड़ी देर और प्लीज, ये थोड़ी देर और प्लीज आज भी हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन Mirchi, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virtua la burka.
1: Mirci, burka. Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Motor se bol rahe hain?
1: हाँ जी
2: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
1: ठीक है सर,
2: 5 सेकंड जल्दी।
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: प्लीज जल्दी बता दो।
1: हेलो
2: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता। हेलो,
4: हाँ जी सर।
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड।
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर।
2: एक सेकंड रुकिए।
4: सर साइड में, लेफ्ट साइड में।
2: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज खाता था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
4: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
2: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए। ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
4: हाँ जी।
2: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी।
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
4: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
2: एक सेकंड रुकिए।
4: क्या हो गया?
2: आए, गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुक गई।
3: मैडम, क्या नाम है आपका?
1: दिव्या।
3: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
1: Oh, God. I was so
0: tense. I don't know what would happen. कुकड़ों को मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची। It's hot. Yep,
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: वैसे एक बात तो है, फाल्गुनी पाठक के एल्बम्स में जो मेन लीड्स हुआ करते थे ना, मेल फीमेल दोनों ही बड़े क्यूट हुआ करते थे। अब इस गाने को ही ले लो यार, दोनों ही मेन लीड्स इतने क्यूट थे। हालांकि जो बंदा है वो तो नोन फेस है, लेकिन जो बंदी है ना, वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये लड़की कहाँ से आई और कहाँ चली गई। उसके इस एल्बम के बाद तो कभी नजर नहीं आई। एंड ऑल्सो आई मस्ट टेल यू कि इस एल्बम में जो वो बंदी है ना, जो क्यूट सी छोटे बालों वाली लड़की है, वो ट्विंकल खन्ना जैसी नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे ट्विंकल खन्ना की छोटी बहन है। हालांकि ट्विंकल खन्ना की छोटी बहन उनकी बहन ज्यादा लगती नहीं है, लेकिन ये जरूर लगती है।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, मैंने ट्विंकल खन्ना के siblings को लेकर तो लंबी चौड़ी बात कर दी, अब काम की बात करते हैं, which is मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर रोज की तरह दो गाने मैं मिक्स करके आपके लिए चला देती हूं और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो धुने चली हैं ये कौन सी है। आज की जो दो धुने हैं वो है कुछ यूं।

बस जी डीएम कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, आपका नाम, आपके शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो। एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
1: हाँ, इसका भी सही है। इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं, शौक सभा होगी।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
7: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 15 साल पहले की बात होगी, जब मुझे याद है कि मेरे कजिन्स जो जिनके पास भी नए नए फोन आए थे, वो लोग एक रिंगटोन के लिए भी पैसा दिया करते थे यार।
2: ये नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वाकई में मैंने भी अपनी माँ का सर खा लिया था ये बोलते बोलते कि मम्मा प्लीज प्लीज प्लीज ना खर्चा करने दो, ना हम भी एक रिंगटोन खरीदेंगे, ना ये वाली रिंगटोन कितनी अच्छी लग रही है। आई थिंक K3G का कोई गाना था, उसकी रिंगटोन चाहिए थी मुझे। और मैं अब ये सोच रही हूँ कि यार उस जमाने में जब लोग पैसे दिया करते थे रिंगटोन के लिए, आज वो टाइम आ गया है कि हम लोग पैसे दे दे किसी को अपना फोन साइलेंट पे रखने के लिए। इनफैक्ट हम खुद अगर अपने फोन को देखेंगे ना, तो मेरा फोन भी जो है वो अक्सर साइलेंट पे ही होता है। इनफैक्ट अगर मैं उसको साइलेंट पे ना भी करूँ ना, तो कुछ तो मेरे फोन के साथ ऐसा हो गया कि वो खुद ही साइलेंट पे चला जाता है, और मैं इस चीज से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हूँ। हाँ, लोगों को तो मैं ऐसा जताती हूँ कि अरे यार मेरा फोन तो खुद ही साइलेंट पे चला जाता है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, बट यू नो व्हाट इज रॉन्ग विद इट, एक्चुअली नथिंग। इनफैक्ट आई शुड से देयर इज समथिंग रियली राइट विद माय फोन, कि वो अपने आप ही साइलेंट मोड पे चला जाता है। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि कैसे एक जमाने में ये रिंगटोन हमारी लाइफ के अंदर म्यूजिक हुआ करती थी, एक्साइटमेंट हुआ करती थी। आज इट हैज टर्न्ड इनटू साइलेंस, इट हैज टर्न्ड इनटू पेशेंस, इट हैज टर्न्ड इनटू पीस। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, तो ये यूआई फोन्स के साथ भी। जब नए नए आए थे ना, तो हमें पता नहीं था कि हम इसे किस लेवल तक इस्तेमाल कर लेंगे, और एक सर्टन पॉइंट के बाद तो हम फोन को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, फोन हमारा इस्तेमाल कर रहा होता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रियली हैज हैपेंड इन आवर लाइव्स, नहीं क्या? चलो जी, विद दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
2: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: खट खट.
5: कौन है?
4: अज्जू.
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए. होए!
5: खट खट. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
1: Mirchi.
6: It's hot. It's hot.

أشهد أن لا

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 90s का प्यार और इजहार मुंह से नहीं हुआ करता था, गानों से हुआ करता था.
0: नब्बे की गप्पे.
1: Hi, this is me, Zara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और यार 90s का वो जमाना ऐसा था जहाँ पर किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए एक दिन की जरूरत नहीं होती थी. अगर आपको कोई पसंद है और उससे इजहार करना है अपनी फीलिंग्स का, तो सिंपल होता था, एक सीडी जो है वो बंदा अपनी बंदी के लिए राइट करके भेज दिया करता था, और उस सीडी के अंदर वो सारे गाने हुआ करते थे जो कि सिर्फ गाने नहीं उसके दिल की जुबान हुआ करते थे. आज के जमाने में तो स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट और यूट्यूब लिंक्स भेजना आम बात है, लेकिन 90s और अर्ली 2000s के प्यार में एक अलग ही मजा था. एक ब्लैंक सीडी लेकर उस पर खत की तरह अपने दिल के गाने लिख देने वाली बात हुआ करती थी, और वो सीडी एक प्यारे से नोट के साथ लड़की तक पहुंचा दी जाती थी. ये एक ऐसी लव लैंग्वेज थी जो बिना बोले सब कह जाती थी. और सबसे बड़ी बात, जो गाने आप सीडी में डालते थे ना, उनमें आपकी फीलिंग्स छिपी होती थी. कोई अगर पहला नशा सुनाए तो समझ लीजिए कि बंदा सच में प्यार में है. तेरा चेहरा या तुम मिले दिल खिले जैसे गाने अगर किसी ने आपके लिए चूज किए, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है. आज भी अगर आपके पास वो पुरानी सीडी संभाल कर रखी है ना आपने, तो समझना कि किसी का दिल उनमें बसा था. क्या आपने कभी किसी के लिए एक स्पेशल सीडी बनाई थी, या आपको कभी किसी ने एक सीडी दी जो आज भी यादों में बसी है? मुझे जरूर बताइएगा डीएम करके ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. एंड फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
2: जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी भाई, संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ। आपको उस थाना आना पड़ेगा।
2: क्यों?
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
2: जी गए थे जी।
3: आपने धरने पे बैठे थे? आप
2: जी बैठे थे
3: वहाँ पे। लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं। आपकी तीन लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
2: हाँ, हम तो जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
3: जस्टिस कैसा? जस्टिस भाई कैसा, मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
2: जी जी गए थे जी।
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
2: जी जी।
3: आपके पड़ी लाठी कोई?
2: मेरे तो नहीं पड़ी।
3: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार। तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
2: सर आप नाराज क्यों?
3: नहीं नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ
2: सर। अपने दोस्तों के कहने पे गया था, कहाँ पे? बहुत दूर था सर लाठी।
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई? बहुत दूर
2: था, बहुत दूर था
3: भाई। इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप। आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
3: वही तो मैं कह रहा हूँ।

0: यार आप बच गए, तीन नाटिया रजिस्टर में चलाइए, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
1: सर? नाराज क्यों है? मैं
0: नहीं,
1: तो
0: नाराजगी की तो बात है,
1: मैं दोस्तों के कहने पे गया
0: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ तीन लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको, यार क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई। यार
1: मैं सामने आ जाऊंगा
0: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई, इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है,
1: वो
0: बहुत बहुत दूर था, नाराज वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ।
2: संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तुम अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
3: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Blue Wali Gum Ki Botal.
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करके ना आज दिल की उंगलियां उन गलियों में खो गई हैं जहां तुम्हारी महक और स्पंज वाली टोपी वाली जो ठंडी नमी थी ना वो हमारे बचपन का हिस्सा हुआ करती थी। स्कूल के दिनों में जब प्रोजेक्ट्स और चार्ट पेपर पर हमारा टसल चलता था तब तुम्हारी चिपचिप हर कदम पर हमारा साथ निभाया करती थी। स्पेशली तब जब रात के 10 बजे ये याद आता था कि मम्मा एक प्रोजेक्ट दिया था मैम ने, कल सबमिट करना है। तुम्हारे ढक्कन में लगी हुई वो मुलायम सी जो स्पंज थी ना जिसे अक्सर हम खेल खेल कर उंगलियों से दबाते रहते थे, वो बड़ी याद आती है यार। तुम्हारी खुशबू वो तो आज भी दिमाग के किसी कोने में बसी हुई है, वही हल्की मीठी ठंडी ठंडी और जानी पहचानी सी जो बचपन की मासूमियत और बेफिक्री भरी दुनिया की याद दिलाती है। तुम बस एक गोंद की बोतल नहीं थी बल्कि हमारी क्रिएटिविटी की साथी, हमारी मेहनत की गवाह और कभी कभी किताबों के पेजेस के बीच चिपकाई गई एक यादगार दोस्त भी हुआ करती थी। तुम्हारी जगह आज नई नई ग्लू स्टिक्स और फैंसी गोंद की बोतलों ने ले तो लिया, लेकिन जो अपनापन तुम्हारे साथ था ना वो कहीं और महसूस नहीं होता यार। शायद अब तुम दुकानों में कम नजर आती हो लेकिन हमारे बचपन की यादों में तुम अक्सर नजर आती हो। तुम्हारे बिना स्कूल प्रोजेक्ट्स की वो भाग दौड़, दोस्तों के साथ तुम्हारे ढक्कन को घुमाकर खोलना और कभी कभी गलती से हाथों पर गोंद लगाकर उंगलियों से उसका छिलना अधूरा सा लगता है। और वैसे पता है क्या, तुम्हारी एक बड़ी खास बात हो चुकी है, अब तुम अपनी पर्सनालिटी की तरह हमारी यादों से भी चिपक गई हो। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में जी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: हाँ इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी our entertainment is your entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6
9: FM Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में प्यार तूने क्या किया का टाइटल ट्रैक इज कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसने अपनी जिंदगी में प्यार करने के बाद ये पूछा ना होगा कि प्यार तूने क्या किया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्यार में पड़ जाते हो ना, तो आपको जो प्यार के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो जब नजर आने लग जाते हैं ना, तो वाकई में आप ये सवाल कर रहे होते हो कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ. रातों की नींदें जो हैं वो गायब हो जाती हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाता है, सिर्फ एक चीज के ऊपर पूरी तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो, और वो होता है वो इंसान जो आपके ख्यालों में घर कर चुका होता है. तभी तो ये सवाल आता है कि प्यार तूने क्या किया. हालांकि जब प्यार होता है ना बॉस, तो बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही होती है, पेट में ना हमेशा बटरफ्लाईज होती है, एंड तभी इंसान जो है ना वो ये भी सोच रहा होता है कि एक ही पल में अचानक दी है नई दुनिया, दी है नई खुशियां. जब भी मेट की गीत नहीं बोलती है कि मुझे आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ, वैसे ही प्यार में पड़ रहे इंसान के साथ भी होता है कि उसको ना किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो प्यार में होता है. और जब इंसान प्यार में होता है ना, तो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं होता है, हमें सिर्फ एक ही चीज से खुशी मिलती है, एंड दैट इज दैट वन पर्सन. जिसका बस कॉल आ जाए तो दिन बन जाता है, जिसकी फोटो देख लो तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जिसके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हो और आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता है आसपास वाले लोग क्या बात कर रहे हैं क्या बात नहीं कर रहे हैं, विच इज गुड, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है या बुराइयां कर रहा है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन तो उस तरफ जाएगा ही नहीं ना यार. दिन तो आपका हमेशा ऑन द हाई ही रहता है, इनफैक्ट दिन जो है वो लो पर भी बहुत ज्यादा जाता है, बिकॉज देर इज अ टाइम जब आपको ये लगता है कि यार अभी तक उसका फोन नहीं आया, अभी तक उसका मैसेज नहीं आया. 100 बारी एक ही मैसेज को पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार वो मैसेज में क्या लिखा था, एक बार पढ़ के खोल के देख लेती हूँ. एंड तभी इस गाने की ये लाइन आती है कि तू दे रहा है एहसास ये जैसे कोई मेरे पास है. वाकई में प्यार तूने क्या किया. और जाते जाते यही गाना आपके लिए चलाती भी जा रही हूँ. आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं तो आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: खट खट,
6: who there?
5: बंता,
6: बंता who?
5: अरे बंता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खट खट, who there?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे समझाऊँ?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: शरारत सीखो ना सीखो, लेकिन स्विमिंग अपनी लाइफ में जरूर सीखो। मस्त मौला गौरव इसलिए कह रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स इसी एक्वेटिक से आते हैं। शाम के 4:03 के करीब घड़ी की सुई बढ़ती हुई।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: और हर घंटे के साथ मेडल्स टेली पर अलग अलग देशों की मेडल्स बढ़ते हुए हैं। GCC Games 2026 की बात करें तो यस, आज हम अगर मेडल टेली की बात करें तो पहले दिन जिन देश ने मेडल पाया वो कंट्रीज कौन कौन सी, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन। यस, सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है 4 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 8 मेडल्स, लेकिन 3 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 10 मेडल, लेकिन नंबर 2 की पोजीशन पर क्योंकि 3 गोल्ड हमारे और 4 गोल्ड सऊदी के हैं। बट कुल मिलाकर यही कहना चाहते हैं कदर अपने घर में कमाल किए हुए हैं और यह बता रहा है कि अगर ये और मेडल्स बढ़ते हैं तो हम अपने घर में अब तक सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। वेल, इतना ही कहूंगा, अपने कदर की टीम को सपोर्ट करते रहिए, जितना हो सके आप जरूर पहुंचिए और इनका मनोबल बढ़ाइए क्योंकि जीसीसी गेम्स मेरे भाई फ्यूचर के बड़े ओलंपिक से लेकर एशिया के स्टार्स यहीं से निकलने वाले। मस्त बोलो गौरव आपके साथ एंड शुरुआत करते हैं शाम शानदार किसी बात से कि कतर मेडल टैली पर नंबर 2 जरूर है, लेकिन जिस दिन आखिरी दिन होगा हम नंबर 1 की पोजीशन पर होंगे। इसी उम्मीद से आगे बढ़ते हैं शाम शानदार में, खूब सारी बातें करेंगे मिर्ची पर। इट्स हॉट

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट
2: okay, okay, okay,
3: तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा वेट सर, वेट. सर यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी.
3: गुड सर, वेरी गुड सर.
2: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
3: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं. बड़ों वाले
2: पूछो यार.
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
2: पूरे 100.
3: ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा.
3: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं.
3: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: यार बजट ही बन रहा है, प्राइसेस देखिए, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है.
6: मैंने बोला था ना, मी 12th का वेट कर.
5: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
6: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है, 12th to 18th में. इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
5: किलर ऑफर्स. मैं अभी बैग पैक करता हूँ.
6: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट. मुमताजा, डोंट मिस आउट.
7: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and The Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

हाँ जी, छोड़ा है घर बार, छोड़ा है संसार, तो करो ना दूसरों से खूब प्यार। मस्त मौला गौरव। यार जब हम घर से दूर होते हैं तो फिर जब हम अपनों के साथ तो नहीं होते, फिर दूसरों के साथ होते हैं, तो कम से कम उनसे ढेर सारा प्यार बढ़ाओ यार, उनसे दोस्ती करो। यही लोग आपके काम आते हैं दुनिया के इस हिस्से में। फिलहाल इन सब के बीच दुनिया में प्यार और बहुत सारा यू नो व्यापार हो, यही हम चाहते हैं। और इसकी एक वानगी देखने को मिली है जब एक एलएनजी टैंकर ऑपरेटेड बाय कतरी कंपनी हैज क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ चुका है और मरीन ट्रैफिक से आगे बढ़ते हुए ये बता रहा है कि चीजें अब बेहतर हो रही हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट क्रॉसिंग सिंस द वॉर बिगिन, उसके बाद से पहली क्रॉसिंग है। जोरदार ताली हो जाए दोस्तों, ये कामयाबी की तरफ बढ़ता चीज है। वैसे इन सब के बीच बस मोरो गौरव इतने कहेगा, पूरी दुनिया में यार शांति हो, यही तो हम चाहते हैं। और जीसीसी नेशंस एक दूसरे के साथ खड़े होकर खेलों में प्रतियोगिता कर रहे हैं। जीसीसी गेम्स 2026 की बात कर रहा हूं, जहां पर अब मेडल्स आने शुरू हो चुके हैं। स्विमिंग, बोलिंग एंड टैक्वांडो से मेडल्स आए हैं और मैंने बताया है कतर मेडल टैली पर नंबर 2 पर है। सऊदी अरेबिया इस मेडल टैली को लीड कर रहा है, लेकिन अभी तो बस शुरुआत हुई है जनाब। इंतजार कीजिए, धीरे धीरे हम इस टेबल पर लीडर बनकर आएंगे और अपने जेसीसी गेम्स में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करेंगे। इस उम्मीद से कि आप भी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हासिल करें, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हासिल करने से याद आया, अब हमें फीफा वर्ल्ड कप को भी हासिल करने की तैयारियां कर देनी है। कतर ने अपने 34 मैन का प्रीलिमिनरी स्क्वाड जो है वो शुरुआत कर दी है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। एंड मुझे उम्मीद है अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार फीफा वर्ल्ड कप पर अपना बेस्ट इंपैक्ट छोड़कर लौटेगा कतर। 89.6 मिर्ची 1 हबीबी हरारा कतर, इट्स हॉट।

0: कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे, क्या गाना है यार। लेकिन जब हम आपके साथ हैं तो गाने भी सुनाते हैं और बातों की बात भी आपके कानों तक पहुंचाते हैं। यस, अगर हम बात करें तो मस्त मौला गौरव अब बात करेगा हमारे कतर के बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। यस, और ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ बढ़ती हुई गर्मी का पारा, एंड अगले दिनों कुछ और इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि पानी पीने की क्षमता जितनी बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए, लेकिन इन सब के बीच याद रखिए ये टेम्परेचर इस वीकेंड तो धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन आने वाले टाइम में ये काफी तेजी से बढ़ने वाला है दोस्तों। तो प्लीज थोड़ा अपना ध्यान रखिए। कतर मेट्रोल डिपार्टमेंट भी हमें बार बार वार्न कर रहा है, हाई स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो तुम्हारे कतर में एंटर कर रही है रह रहकर, लेकिन इन सब के बीच पानी पीने के पारे को हमें बढ़ाए रखना है ताकि किसी भी तरह के सिचुएशन बदलने में भी हमारी बॉडी जो है वो एकदम मजबूत रहे। डस्ट स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड एंड राइज इन टेम्परेचर, ये होगा अब हमारे कतर में हालात आने वाले टाइम में। लू के थपेड़ों के साथ हमें और गर्मी झेलनी पड़ेगी जनाब। तो गाड़ियों को बनने से अगर रोकना चाहते हो तंदूर, तो उसमें अम्ब्रेला अच्छे से लगा देना अंदर साइड में ताकि विंडस्क्रीन से ज्यादा गर्मी ना हो जाए। 89.6 मिर्ची वाली हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: भाई इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
3: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
4: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
3: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
5: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
6: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: हवा के झोंके आज लू के जैसे लग रहे हैं। मौसम बदलेगा ऐसा अब लग रहा है, क्योंकि कई कतर का समर स्टार धीरे धीरे अब शुरू होने वाला है और अब जबरदस्त गर्मी का पारा चढ़ने वाला है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट,
0: बात करें दिन का मैक्सिमम तापमान है आज एक बार फिर से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 41 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 27 मिनिमम हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि हवाओं की रफ्तार जरूर बनी हुई है 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एंड आज अगर पिछले दिनों की बात करें तो 4 डिग्री ज्यादा एवरेज हाई था। ये बता रहा है कि दोस्तों गर्मी की एंट्री हो चुकी है, ऐसे में अपने पानी पीने के मीटर को बढ़ा लीजिए, जितना हो सके बॉडी को हाइड्रेट रखिए, धूप में अपने आप को बचाए रखिए, एंड मिर्ची सुनते रहिए क्योंकि एंटरटेनमेंट का असली तूफान तो हम ही लेकर आते हैं। सुनते रहिए मिर्ची और हमारे भाई वेदर चेक के पार्टनर आरएसएल ग्रुप, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी जॉब्स की गारंटी। मिर्ची थॉट।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। एम के आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अलवक्रा, अलजनूब गार्डन्स, ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424240। एम के आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
5: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
6: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
5: खटखट, who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: बंजारे लेकर आए थे गाना बैरन, दो भाइयों की जोड़ी ने कमाल किया है। लेकिन फिलहाल कमाल तो हम भी करते हैं, रोज शाम आ जाते हैं आपसे बातें करने। 5:02 का टाइम हो गया और इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये टाइम ना धीरे धीरे गर्मी की फीलिंग दिला रहा है।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: मैंने तो आज दोपहर में ना हमने दही चावल दाल ये सब खाया, उसके बाद से नींद वाली फीलिंग आ रही थी, तो मुझे लगा वो टिपिकल समर्स जो है हमारे आने वाले। वेल फिलहाल हम आपके साथ इस घंटे वो खेलते हैं जिसे कहते हैं तो पहचान कौन में एक आवाज, और आपको बताना है ये आवाज किसकी है।
2: हम बिहार में थे तो लोग मुझे मद्रासी बोल के चलाते थे, और वो यू नो बट वो तो दोस्ती यारी में होते रहता है। फिर हम जहाँ भी गए हैं जो कि हम वहाँ के नहीं थे, तो कोई ना कोई तो बुला ही देता है यू नो।
0: हाय हाय क्या बात है, क्या बात है, शानदार एक्टर है, बस इतना ही कह सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए।
2: हम बिहार में थे तो लोग मुझे मद्रासी बोल के चलाते थे, और वो यू नो बट वो तो दोस्ती यारी में होते रहता है। फिर हम जहाँ भी गए हैं जो कि हम वहाँ के नहीं थे, तो कोई ना कोई तो बुला ही देता है यू नो।
0: 5:00 पर इतना ही कह सकते हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों ने 90s में इनकी फिल्म देखकर इनको बहुत पसंद किया था। 5:00 वॉइस नोट पर अपना जवाब भेजिए कि गौरव आपने जो आवाज सुनाई है ये तो फलाने एक्टर की है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए।
2: हम बिहार में थे तो लोग मुझे मद्रासी बोल के चलाते थे, और वो यू नो बट वो तो दोस्ती यारी में होते रहता है। फिर हम जहाँ भी गए हैं
0: बस इतना ही सुना दे, लोगों ने इनको चिढ़ाया ही है। 5:00 पर वॉइस नोट जबरदस्त तरीके से, क्या बात है, मेरा सवाल कंप्लीट भी नहीं हुआ है। क्या बात है भाई, क्या बात है। लंबी चौड़ी ऑडियो लिस्ट आ चुकी है, अब से थोड़ी देर में आप भी अपने आवाज में आंसर भेज सकते हो 5:00 पर। मस्त फॉलो गौरव इंतजार कर रहा है। मिर्ची इट्स हॉट,
1: मिर्ची फ्रेश माल।
3: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल
3: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: यार बजट टीवी बन रहा है, प्राइसेस देखे, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
7: मैंने बोला था ना मी 12th का वेट कर।
6: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
7: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है, 12th to 18th में। इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
6: किलर ऑफर्स, मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
7: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
5: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
5: FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: गर्मी आ गई है। इस गाने में एक लाइन बोलती है, जमा दही पीले बटर छाछ मिल्क। फिलहाल ऐसे मौसम में वाकई में छाछ वाछ पीना चाहिए। मस्त मौला गौरव फिलहाल आपके साथ है तो खेलना चाहिए। एक आवाज सुनाता हूँ और पूछता हूँ, बताइए किसकी आवाज है।
1: हम बिहार में थे तो लोग मुझे मद्रासी बोल के चिल्लाते थे और वो यू नो पर वो तो दोस्ती यारी में होते रहता है। फिर हम जहाँ भी गए हैं जो कि हम वहाँ के नहीं थे तो कोई ना कोई तो बुला ही देता है यू नो
0: बिहारी है भैया, बिहारी है। कौन सा एक्टर है जिसने ये लाइन कही है?
2: गौरव जो अभी आवाज सुना था वो एक्टर आर माधवन है।
3: Hi Gaurav, my name is Emil. I'm talking from Furusia Street and I think this is R. Madhavan. R. Madhavan, I think. Okay.
4: गुड इवनिंग गौरव, ये आवाज आर महादेवन के, यूसुफ यार। थैंक यू।
0: ओके, बहुत सही। एंड ट्रस्ट मी, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले 5 सेकंड में ही जवाब भेज दिया। सबसे पहले वाले भाई साहब ने तो हमारे सवाल पूछते पूछते ही रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा, उन्होंने स्टार्टिंग ही कर दी जब मैंने बोला क्या बात है क्या बात है, उन्होंने कह दिया आर माधवन है। वैसे फिलहाल इसके अलावा कुछ लोगों ने लिख के बताया, उषा, फिरोज, राजकुमार, सुजीत, राहुल एंड इसके अलावा सुनीत है, अजय है एंड अब्दुल भाई है जिन्होंने गलत जवाब दिया। अब्दुल भाई ने लिखा है दिस इज शाहरुख खान है, ये गड़बड़ हो गई इनसे लग रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो किरण ने भी गलत जवाब दिया है। यस, उन्होंने लिखा था ये आवाज है शंकर महादेवन की। ओह गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हाँ जी। राजकुमार नयाल साहब आपसे भी गड़बड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों ने गलत भी बताया, ऐसा नहीं सब सही बता रहे हैं। वैसे अगर बात करें तो किसी ने रजनीकांत भी लिखा है, किरण खरेशिया जी ने रजनीकांत लिखा है, ये गड़बड़ है एंड शंकर महादेवन राजकुमार भाई ने लिखा है वो भी गड़बड़ है। बिल्कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ, सही जवाब है आर माधवन की, ये वॉइस थी। यस, और मुझे अच्छे से याद है राम जी लंदन वाली एक पिक्चर भी बनी थी जिसमें उन्होंने बिहारी एक्सेंट बेहतरीन कॉपी किया था, क्योंकि वो रहे इसलिए मैं कहता हूँ वर्सटाइल, शानदार, कमाल और मैडी को कैसे बोल सकते हैं यार, 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: हाय इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and The Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
6: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस कल्चर और कॉन्फिडेंस। एम के आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में अल वक्रा अल जनूब गार्डन्स ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424। एम के आर्ट्स एकेडमी वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
7: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
8: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
9: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
10: खूब मिलेगा, मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: सांझ की आवाज में लवर गाना खत्म हुआ और आपका असली लवर आ गया है। फिलहाल के लिए मस्त मौला गौरव आपके साथ है। देवी और सजनों, ओमान में एक जबरदस्त गैंग को पर्दाफाश कर सामने ला खड़ा किया रॉयल ओमान पुलिस ने।
1: #974
0: रॉयल ओमान पुलिस ने एक विमेन गैंग को एक्सपोज किया है जो कि बेगिंग के नाम पर बर्गलरीज यानी कि घर घर जाकर चोरियां कर रही थी। यस, मस्कट गवर्नमेंट के कुछ होम्स में ये बात सामने आई कि यहां पर चोरियां हो रही हैं, लेकिन किसी भी तरह से फोर्स एंट्री नहीं है, यानी कि आराम से कोई आ रहा है अंदर दरवाजा वगैरह खोलकर और उसके बाद वहां से चीजें गायब हो जा रही हैं। लगभग 20,000 ओमानी रियाल की ज्वेलरीज जो है यहाँ से स्टोल हुई थी एंड उसके बाद लगातार मोडस ऑपरेंडी पर काम हुआ कि कैसे कर रहे हैं। तो पता ये लगा कि घर की जो सेफ चाबियां आप घर के डोरमैट्स के नीचे, रक्स के नीचे या फिर कोई प्लांट घर के बाहर होता है वहां लगा देते हैं, उन्हीं की चाबियां उठा उठा के इस चोरी को अंजाम दिया गया था। लेकिन रॉयल ओमान पुलिस ने इस पूरी चीज का पर्दाफाश कर दिया और अब वहां पर लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपनी कीज को अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा नेबर्स में रखिए, क्लीनर्स को दीजिए, लेकिन आप ऐसी छुपी जगहों पर मत रखिए जहां पर लोग आसानी से ये चाबी पा जाएं एंड आपके अंदर आकर घर की सफाई की जगह घर से ही सब कुछ सफा कर दें। इस उम्मीद में कि ये प्रैक्टिस हम भी यहां करते हैं पर हम सेफ हैं, पर फिर भी हमें अलर्ट रहना है एंड कोशिश यही करनी है कि इस तरह से हमें अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बताना है कि हमने चाबी कैसे कहाँ रखी है। एंड सबके घर में हिडन स्पॉट होते हैं पर उन्हें सही तरह से आकिए, कहीं ऐसा ना हो आप जिसे हिडन समझ रहे हैं वो धप्पा हो चुका है, यानी कि आई स्पाय आप बोले धप्पा। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो दोनों ने कौन से पिक्चर में भाई?
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100813।
5: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। MK आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अलवक्रा अलजनूब गार्डन्स ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424040। MK आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
6: खट खट।
7: Who that?
6: जस्सी।
7: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
6: जस्सी who has come, आंटी जी?
7: खट खट, Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

क्यों पेपॉन की आवाज में ये गाना सुनाया किसने? एंड फिलहाल के लिए आपको अपनी आवाज में मैंने तो बता दिया, लेकिन आज जो अपने चिल्ला चिल्ला के बता रहा है ना, वो है रेट्स। यस, अब तक ऑल टाइम हाई इंडियन रुपीज अगेंस्ट वन कतरी रियाल 26.23 रुपए भारतीय मुद्रा में। वहीं वन कतरी रियाल के बदले अगर हम बात करें लंकन रुपीज की 89.15 लंकन रुपीज। वहीं अगर तपाई को नेपाली रुपीज के रेट की बात करेगा दाजो, एक कतरी रियाल के बदले 41.88 का भल्चर रेट है। दाया जी 41.88 का भल्चर रेट है। बहनी 41.88 का रेट है नेपाली रुपीज को। अगर इसके बाद हम बात करें भाई पाकिस्तान रुपीज की जनाब, 77.03 यानी कि एक कतरी रियाल के बदले वाहिद कतरी रियाल के बदले 77.03 पाकिस्तान रुपीज। और बंधु बांग्लादेशी टका दादा एकटा कतरी रियाल के बदले 33.66 बांग्लादेशी टका का रेट आज। तो मस्त बोलो गौरव के साथ आप सुनी छिलम मिर्ची इट्स हॉट आज। तो

0: लेकिन अगर आपकी ये मोहब्बत किताबों से है तो हम आपके लिए कुछ लाए हैं। यस, कतर नेशनल लाइब्रेरी को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट है, उससे पहले 6:03 होने आ रहे हैं।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: देखिए भाई, ऐसा है कि 14 मई से 23 मई के बीच दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में शुरू होने जा रहा है 35th दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर। यस, और अब अगले कुछ दिन किताबों के शौकीन, हर एज कैटेगरी के लोग DCC के इसी 35th दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर का हिस्सा बनेंगे। अब इतनी सारी इंटरैक्टिव बूथ्स हैं तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कतर नेशनल लाइब्रेरी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि विजिटर्स को वो इंट्रोड्यूस करा पाए लाइब्रेरी फॉर यू कैंपेन से। यस, एक ऐसी लाइब्रेरी जो QNL ने एस्टैब्लिश की है, QNL फॉर ऑल बोलकर, एंड यहाँ पर हजारों किताबें आपका इंतजार करिए। इनफैक्ट डिजिटली भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कतर में किताबों को लेकर, किताबों को पढ़ने को लेकर, बढ़ावा देने को लेकर हर साल ये बुक फेयर होता है, और इस बार QNL के पार्टिसिपेट करने से ये और बड़ा होने वाला है। यस, ये इस बार इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस लेकर आए हैं 35th दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर में, और मुझे उम्मीद है कतर नेशनल लाइब्रेरी के इस पूरे साल के जो उनकी मुहिम के साथ वो आए हैं वो सक्सेसफुल होंगे एंड लोगों को और इंट्रोड्यूस करा पाएंगे एंड बुक फेयर में अपना एक बड़ा इम्पैक्ट भी छोड़ पाएंगे। QNL को ऑल द बेस्ट। वैसे मैं बताऊं, मैं अक्सर QNL जाता हूं एंड मेरे बच्चे को बहुत पसंद है QNL जाकर बुक पढ़ना, शांति का माहौल, अपने मन की किताबें एंड ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में। यार मैं इतना ही कहता हूं, वो मुल्क जो अपने आप पढ़ने लिखने को बढ़ावा दे, लाइब्रेरी कल्चर को बढ़ावा दे, वो वाकई में तरक्की बहुत तेजी से करता है। कतर की हुकूमत को दिल से सलाम, QNL लाइब्रेरी के सारे स्टाफ मेंबर्स को दिल से सलाम जो ये काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अगर अभी तक आपने अपना कार्ड नहीं बनवाया तो जरूर बनवाइए, इनके ऐप को डाउनलोड कीजिए, यू विल कम टू नो कितनी सारी फायदे की चीजें हैं। फिलहाल क्या आप बता सकते हैं कतर नेशनल लाइब्रेरी कतर के किस इलाके में है? 5001896 पर वॉइस नोट में अपना जवाब भेज दीजिए कि हमारा गौरव भाई आप जो कह रहे हैं कतर नेशनल लाइब्रेरी तो फला एरिया में है। देखिए कितने लोगों को पता है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: मोटर से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी.
2: मैडम प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है.
1: ठीक है सर.
2: 5 सेकंड जल्दी.
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ.
1: हेलो.
2: हेलो.
1: हेलो.
2: प्लीज जल्दी बता दो.
1: कोई कस्टमर हेलो.
2: हेलो.
1: बात
2: होल्ड नहीं कर सकता. हेलो.
4: हाँ जी सर.
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो.
2: एक सेकंड.
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर.
2: एक सेकंड रुकिए.
4: सर साइड में, लेफ्ट साइड में.
2: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड.
4: सर इग्निशन ऑफ कर दो.
2: इग्निशन. एक सेकंड रुकिए. ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं.
4: हाँ जी.
2: एक सेकंड. सर कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: ऐसे मेरे को क्या पता कहाँ पे है.
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से.
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो.
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा. एक सेकंड कुछ और. ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी.
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए.
4: बिल्कुल गए. एक्सेलरेशन छोड़ दो सर.
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो.
2: एक सेकंड रुके. आए.
4: क्या हो गया?
2: आए गाड़ी ठुक गई. गाड़ी ठुक गई.
3: मैडम क्या नाम है आपका?
1: दिव्या.
3: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने.
1: I was so dead, I thought, what happened?
5: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
6: यार बजट ही बन रहा है, प्राइसेस देखें. सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है.
7: मैंने बोला था ना मी 12th का वेट कर.
6: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
7: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में. मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th to 18th में. इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
6: किलर ऑफर्स. मैं अभी बैग पैक करता हूँ.
7: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट. मुमताजा, डोंट मिस आउट.
5: के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: यार बजट ही नहीं बन रहा है, प्राइसेस देखें. सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है.
7: मैंने बोला था ना मी 12th का वेट कर.
6: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
7: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में. मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th to 18th में. इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
6: किलर ऑफर्स. मैं अभी बैग पैक करता हूँ.
7: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली

भाई कतर बोर्ड शो ने चार चार बड़े अवार्ड्स इवेंटेक्स में जीत लिए। यस, नवंबर ऑफ 2025 वाज ऑल अबाउट कतर बोर्ड शो और इसीलिए चार अवार्ड्स इवेंटेक्स 2026 में इसी को मिले हैं। यस, बार्सिलोना स्पेन में होने वाला ये ग्लोबल इवेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड शो, वहां पर कतर बोर्ड शो ने चार अवार्ड्स अपने नाम किए हैं मिडिल ईस्टर्न इवेंट कैटेगरी में, अलॉन्ग साइड ब्रॉन्ज इन थ्री एडिशनल कैटेगरीज जिसमें ट्रेड, कंज्यूमर एंड आउटडोर इवेंट शोज है। वेल, इतना ही बताना चाहूंगा, 5th to 8th of November ओल्ड दोहा पोर्ट पर बियॉन्ड द फर्स्ट होराइजन नाम से एक प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया ये कतर बोर्ड शो, और अब ये चार प्रेस्टीजियस अवार्ड के साथ कतर का मोस्ट अवेटेड शो बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस साल भी एक्साइटमेंट सबके अंदर भर चुका है। एंड कतर बोर्ड शो में यार इतने खूबसूरत फायरवर्क्स होते थे, मैं सच कह रहा हूं ये एक ऐसा इवेंट है जो आने वाले टाइम में और बड़ा होता जाएगा। एंड लग्जरी एंड लोगों का क्रेज स्पेशली बड़े यॉट्स को देखकर वो एक अलग ही फील है भाई। मैं कहता हूं कि कतर हमें दुनिया का हर बड़ा एक्सपीरियंस दे रहा है, एंड वो भी हमारे और आपके जेब से कुछ पैसे भी ढीले नहीं होते दोस्त। इसीलिए मैं कहता हूं वन सच प्लेस जहां दुनिया में आप सारे बड़े एक्सपीरियंस कर रहे हो कम से कम खर्चे में, वो हमारा कतर है। एंड अब ऐसे में नेशनल विजन 2030 को अलाइन करते हुए जिस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रोथ पर है, हमें और बड़ा बनाने के लिए मेहनत करनी है। हम सब भी ब्रांड एम्बेसडर है कतर टूरिज्म की, इस बात को समझिए एंड लोगों तक बताइए कि किस तरह से यहाँ जब विंटर्स आते हैं तो अलग इवेंट होते हैं, समर्स आते हैं तो हाला समर्स जैसे इवेंट होते हैं, ताकि दुनिया भर के लोग अपने लिए जब प्लानिंग कर रहे हो अगले वेकेशन की तो कतर उनकी लिस्ट में सबसे नंबर वन पे होना चाहिए। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

आज गाड़ी नहीं अब प्लेन तेरा भाई उड़ाएगा। वेल मस्ट मौला गौरव आपके साथ है। और आप जानते हैं कि कतर में अगर आपको प्राइवेट जेट या प्लेन उड़ाने हैं तो कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी आपके लिए मौका लेकर आई है। #974 अगर आप वो हैं जिसने बचपन में साइकिल फास्ट चलाई, कॉलेज में अपनी बाइक को उड़ाया और अब गाड़ी भी एकदम दमदार माइकल शुमाकर बनकर चलाते हैं, तो अब आपको नेक्स्ट लेवल ट्रांसपोर्ट को ट्राई करने का टाइम आ गया है। यस, कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अब आप कतर में प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स के थ्रू जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 17 ईयर्स, मेडिकल क्लियरेंस होगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए एंड ट्रेनिंग मैंडेटरी है। मतलब ऑफिशियली अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप कतर में प्लेन उड़ा सकते हैं। अब बाइक पे बहुत फास्ट चले हो भैया, धूम वाली फीलिंग आई है, लेकिन प्राइवेट जेट को फास्ट चलाना ये अब रियल एड्रेनलिन रश जो है आपके अंदर पैदा करेगा। एंड कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रिक्वायरमेंट बता दी है, अगर आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस फॉर एरोप्लेन्स लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूर, अगर इंटरेस्टेड है तो जाना चाहिए। खर्चे लगेंगे लेकिन सर एक बार जब प्लेन उड़ाएंगे ना तो फिर दुनिया के बड़े बड़े सपने आपके आगे उड़ते हुए आपको नजर आएंगे। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
3: भाई इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

लाइफ में सबसे बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस क्या पता है? पेरेंट बनना यार। ये फीलिंग दुनिया में सबसे अलग है, सबसे खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ जो छोटी छोटी वरीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, हम उसमें बड़ा घबराते हैं। चाहे अपने बच्चे का पहला फीवर आया हो, हम रात भर उठ जाते हैं, बच्चे को कहते हैं बस इसको दिक्कत ना हो, या फिर बच्चा जब पहली बार किसी स्पोर्ट फील्ड में जा रहा होता है ना, तो हमें लगता है फिट तो है ना, कर तो लेगा ना, इतना लंबा मैच चलने वाला, सब ठीक तो रहेगा ना। और सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे को ना ऐसी सिचुएशन में एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, और वो ट्रीटमेंट सिर्फ ट्रीटमेंट ना हो, प्यार और कंफर्ट भी साथ लेकर आए। और इसी ट्रस्ट के साथ कतर में कई सारी फैमिलीज चूज करती हैं किम्स हेल्थ कतर, क्योंकि यहाँ के पेडियाट्रिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स और उनका जेंटल अप्रोच बच्चों को एक सिर्फ क्लिनिकल एनवायरनमेंट नहीं देता है, उनके अंदर वो कंफर्ट पैदा करता है कि वो खुल के अपनी चीजें बता पाते हैं, डॉक्टर से सब कुछ शेयर करते हैं। बस मैं यही कहूंगा, चाहे बच्चों का पहला फीवर हो या फिर स्पोर्ट्स के मैदान पर होने वाली छोटी बड़ी इंजरीज का चेकअप, सब कुछ आपके बच्चे की इस जर्नी में साथ साथ देता है किम्स हेल्थ का वो साथ, जहां पर पीडियाट्रिक एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं एंड आपके बच्चे को बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। किम्स हेल्थ कतर, वेयर लिटिल लाइव्स गेट्स द बिगेस्ट केयर। और मस्त बोलो गौरव ने बात बताई है, तो अगर आपके बच्चे को चाहिए अभी लेटेस्ट में कोई भी तरह की डॉक्टर टेंशन, तो किम्स हेल्थ इज द राइट प्लेस। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Bollywood बोल डाल, Bollywood Bollywood Bollywood बोल डाल.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: रजा मुराद जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन. अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था. पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था.
3: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood बोल डाल, Bollywood Bollywood Bollywood
2: बोल डाल. Only on Mirchi, it's hot.
5: Cut cut.
6: Who that?
5: अगर कर.
6: अगर कर who?
5: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे.
6: Cut cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi,
7: it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, फरमाइए। बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: करण औजला की आवाज में गाना खत्म हुआ बॉयफ्रेंड, लेकिन हम आपके मिर्ची फ्रेंड आ गए हैं लेके बातों की दुकान। शाम के 7:02 से ज्यादा हुए जा
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: कुछ लोग होते हैं ना जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है लेकिन वो किसी से कह नहीं पाते, पर कुछ लोग हैं जो उनकी बातों को समझ जाते हैं। और कतर रेल ने भी अब ऐसी एक मुहिम की शुरुआत की है, सनफ्लावर प्रोग्राम। वेल, ये उन पैसेंजर्स के लिए है जिनके अंदर हिडन डिसेबिलिटीज होती हैं, एंड दोहा मेट्रो लुसेल ट्राम में अब आपको इनके लिए एक स्पेशल वॉलंटियर दिखाई पड़ेंगे। हिडन डिसेबिलिटीज सनफ्लावर प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली ये पूरे ग्लोबल, पूरी दुनिया में एक रिकॉग्नाइज इनिशिएटिव है जो कि कुछ लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कि हिडन डिसेबिलिटीज से होते हैं, एंड वो संकोच करते हैं, उनके मन में बहुत सारी चीजें, प्रश्न आते हैं कि मैं इनको ये बताऊं कि ना बताऊं। लेकिन अब उनके लिए बाकायदा ये सनफ्लावर वाले जर्सी वाले लोग होंगे जिनको देखते ही वो समझ जाएंगे कि ये हमारी हेल्प करेंगे। और इन्हीं बेस्ट बडीज को लास्ट ईयर से शुरू किया गया था, हमद एयरपोर्ट पर भी आपको मिलते हैं, एंड अब इनकी शुरुआत आई सपोर्ट द सनफ्लावर वाले हुडीज के साथ कतर रेल ने भी कर दिया, दोहा मेट्रो लसेल्ट्रा में ये आपके साथ ही रहेंगे। अगर ऐसा कोई भी है जिसके अंदर सिम्टम है और उसे ये हेल्प सीख करनी है या उनके फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि कोई उनकी हेल्प करे, तो आपको सनफ्लावर प्रोग्राम वाली जर्सी वाले ये लोग दिखाई पड़ेंगे दोहा मेट्रो लसेल्ट्रा में। एंड व्हाट अ ग्रेट इनिशिएटिव, वी शुड सपोर्ट। और मैं कहता हूँ यार, कतर सबको दिल से अपनाता है, तभी तो टूरिज्म आगे बढ़ता जा रहा है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
2: बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी भाई, संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ। आपको थाना आना पड़ेगा।
2: क्यों?
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
2: गए थे जी।
3: आपने धरने पे बैठे थे आप?
2: जी बैठे थे।
3: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी 3 लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
2: हाँ बताओ। जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
3: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई, कैसा? मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
2: जी जी गए थे जी।
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
2: जी जी।
3: आपके पड़ी लाठी कोई?
2: मेरे तो नहीं पड़ी।
3: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके 3 लाठियाँ रख गई हैं यार, 3 लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो 2-3 लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
2: सर आप नाराज क्यों?
3: नहीं नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ।
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था, मैं तो बहुत दूर था सर लाठी चार्ज।
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई, बहुत दूर थे।
2: बहुत दूर था सर
3: भाई, इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप। आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, 3 लाठियां रजिस्टर पे चलाइए, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
2: सर नाराज क्यों है? मैं
3: नहीं,
2: तो
3: नाराजगी की तो बात है,
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
3: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, 3 लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में 3 लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई।
2: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
3: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं? मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था, उसमें 3 लाठियां तुम्हारे नाम की है,
2: वो
3: बहुत दूर था।
2: नाराज
3: वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ। संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: सनम।
1: अरे एक ही तो दिल है हमारा कतर, कितनी बार जीतोगे? इतने सारे इवेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज फिर से वापस लौट रही है, और अब सबसे पहली वाली जो आ रही है वो है दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर की।
2: #974974
1: यस, बता दे 35th दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर, जिसकी शुरुआत 14th of May यानी कि कल से होने जा रही है, एंड ये चलेगा 23rd of May तक। दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में ये हर दिन चलने वाला है, एंड यहाँ पर कतर नेशनल लाइब्रेरी पार्टिसिपेट कर रही है विद इंटरक्टिव एक्सपीरियंसेस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्टिविटीज, एंड हम जैसे रीडर्स के लिए कुछ खास एंगेजमेंट जोन्स जहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कुछ सिखाएंगी। वेल, एक बात जरूर बोलूंगा कि कतर नेशनल लाइब्रेरी खुद में एक हिडन जेम है यार कतर का, मतलब फ्री में इतनी सारी बुक्स मिलती है यहाँ पर, डिजिटली भी आप इसके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, आपके लिए बकायदा प्राइवेट स्टडी स्पेसेस भी बनाई हुई है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी कतर में बिल्कुल फ्री में मिलती है, एंड बेस्ट पार्ट, मेट्रो से यहाँ तक का सफर सबसे आसान, तो गाड़ी वाड़ी के पार्किंग की भी चिंता नहीं है जी। आज के डिजिटल वर्ल्ड में भी अगर आपको इस तरह से कोई इतना सारा सब कुछ फ्री में दे रहा है तो आप उसके पास जरूर जाइए, क्योंकि दुनिया का असली नॉलेज इन किताबों में ही छुपा है दोस्त। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, फालतू की पंचायत और ये सब बंद कर देंगे पचड़े, आप सिर्फ किताबों में भड़ जाइए, एंड विश्वास कीजिए एक इतिहास लिख डालेंगे। इस उम्मीद से कि आप दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर का हिस्सा बनेंगे एंड DCC पहुंचेंगे कल से लेकर 23rd of May के बीच, एंड जब फुर्सत मिलेगी तो कतर नेशनल लाइब्रेरी जाकर भी जो मैंने तारीफें की देख कर आइएगा, तो कहेंगे कि यार गौरव सही चीज बता दी तुमने। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
2: हाँ इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
4: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

यार अब कल से नहीं, शुरुआत आज से करनी होगी। आपको शुरुआत करनी होगी अगर आप कतर T100 ट्रायथलन के लिए तैयार हो रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 T100 ट्रायथलन हमारे कतर में आने को तैयार है। एंड अगर आपको भी इस लुसेल में होने वाले ईयर एंड पर सबसे बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो अभी से आपको अपनी स्टैमिना बढ़ानी होगी, फिटनेस गोल्स को अचीव करना होगा और दुनिया के टॉप एथलीट्स के साथ कम्पीट करना होगा। मैडम आपको बता दें इसमें 3 डिफरेंट राउंड होते हैं जहां पर आपको करनी पड़ती है सबसे पहले 2 किलोमीटर की स्विमिंग, 80 किलोमीटर की साइकिलिंग एंड देन 18 किलोमीटर की रनिंग कर आप इस रेस को कंप्लीट करते हैं। 3 डिफरेंट राउंड्स, हम सिर्फ खाने के 3 डिफरेंट राउंड खा सकते हैं, स्टार्टर देन मेन कोर्स उसके बाद डेजर्ट। हाँ जी, हमसे नहीं हो पाएगा ये, लेकिन मेरे जैसे लोगों के बारे में मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा सारा मोटिवेशन रात को रील्स पर दिखाई देता है जब हम देखते हैं कि किस तरह से किसी इंसान ने 40-40 किलो वजन लूज किया। हम एकदम से एक्साइट हो जाते हैं और कहते हैं कल सुबह से उठ जाएंगे दोस्त, लेकिन सुबह ना मेडल सिर्फ और सिर्फ स्नूज ही जीत पाता है क्योंकि हम स्नूज करके फिर सो जाते हैं। लेकिन अगर आप है वो असली वाले प्रो जिसके अंदर है ये फिटनेस का गोल तो भाई आपको आगे आना ही पड़ेगा और कतर T100 ट्रायथलन जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारे कतर में होने जा रही है इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर ये आप और हम देखकर शायद थोड़ा मोटिवेट हो जाए। इतना 100 किलोमीटर वाला मामला तो नहीं कर सकते जिसमें 2 स्विम करना है एंड देन 80 किलोमीटर की हमें साइकिलिंग करनी है फिर 18 किलोमीटर दौड़ना है, बल्कि इसका आधा जरूर करने की कोशिश कर सकते हैं जैसे 10 मिनट रनिंग 10 मिनट स्विमिंग। ये भी कर लिए ना तो थोड़ा बहुत फिटनेस तो अचीव कर ही लेंगे। इसी उम्मीद से कि हम और आप जो रील्स में देख के मोटिवेट होते हैं वो असल लाइफ में भी कभी कर पाएंगे। बस फॉलो करो, आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

गाना खत्म हुआ बदरी की दुल्हनिया, लेकिन हम कहते हैं बदरी की दुल्हनिया हो, फैजान की दुल्हनिया हो, अब्दुल की दुल्हनिया हो, सब ध्यान दो भैया। ये रॉयल ओमान पुलिस ने एक गैंग पकड़ा है जो पहले तो भीख मांग रहा था, लेकिन बाद में उन्हीं घरों में चोरी करने के मुहिम के साथ सक्सेसफुल हुआ था। हालांकि रॉयल ओमान पुलिस के आगे इनकी एक ना चली और ये सब अब सलाखों के पीछे है। वेल बता दें कि ये सब के सब बैगिंग करने गए, लेकिन बैगिंग तो एक स्टाइल था, असल काम इनका बर्गलरी था। एंड ये बहुत सारे जो मस्कट गवर्नरेट के घर थे वहाँ पर चोरियाँ कर पाए, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि ये लोग आराम से घरों में जाते थे, चाबियाँ लगा के एंटर करते थे, क्योंकि इन लोगों को ये पता था कि लोग अपनी स्पेयर डोर कीज जो है या तो डोरमैट के नीचे, रक्स के नीचे, या फिर जो उनके घर में पौधे लगे होते हैं उसमें छुपाते हैं, और इनको जैसे ये पता लगता था ये आराम से जाते थे और घरों में चोरी करते थे। 20,000 ओमानी रियाल की जब चोरी हुई तो फिर मोडस अपरेंडी पर काम हुआ। पुलिस ने कहा आखिर ये कैसे हो रहा है, फाइनली पता लग गया कि भाई ये तो घर की स्पेयर कीज से ही खेला खेल दे रहे हैं। फिर क्या था, अब सब के सब पकड़ा गए हैं, सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये हमारे और आपके लिए भी एक सबक है, अक्सर हम ये काम करते हैं कि अपने घर वालों को बता देते हैं, अरे फला जगह शू रैक में चाबी है, अरे ये कारपेट के नीचे रख दी वहां से ले लेना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अलर्ट रहते हुए कि कहीं हमारी चाबी का भी तो मिसयूज नहीं हो रहा। तो घर में ऐसा माहौल जरूर बनाए रखिए कि कुछ भी एंटर गलती से अगर हमारे घर में कर रहा हो तो हमें पता लग जाए। हालांकि हमारा कतर इज वेरी सेफ एंड यहाँ की हुकूमत को दिल से सलाम, लेकिन यू नेवर नो किसके इरादे कैसे हो। 89.6 मिर्ची वन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने घर का। मस्मोला गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल भाई वीकेंड वाली वाइब लेकर मिर्ची पर। तब तक ले हबीबी मां सलामा, मिर्ची इज हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: Ghana Indie Top 10.
4: Kanika ke saath on Mirchi.
5: Mirchi sun rahe hain aap, bandi ka naam hai RJ Kanika. It's time for the hottest pop music of the week. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao, mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज। गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
6: Number 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन लें तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bindi ka naam hai RJ Kareka. Instagram par jao, mujhe follow karo. Follow karna ekdam free hai. Mujhe pata hai aap phone hi chala rahe the apna. @RJKareka on Instagram par aake quickly say hello. Koi gana share karna ho bindaas aake hit me up. कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे, बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, बिकॉज ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा, पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Burka, burka. Naveed wala burka.
3: Mirchi burka.
4: हेलो
5: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
4: गुड इवनिंग
5: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
4: ओके
5: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा वेट सर वेट.
4: फंक्शन कहाँ हो रहा है
5: सर? यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
4: डर जाएगी.
5: गुड सर, वेरी गुड सर.
4: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
5: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
4: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
5: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
4: पूछो यार.
5: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
4: पूरे 100.
5: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माँ भाई पोषण पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
4: जेल में जाना पड़ेगा.
5: ग्रेट सर ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
4: समझा नहीं मैं.
5: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे.
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: Indie Top 10
12: Kanika ke saath on Mirchi
13: number 6.

0: अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ
0: हेलो स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक। लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है, इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम। कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है। लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है। अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में। वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची। वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था।
2: वास्ते जा भी दूं, मैं गवाह मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं।
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल में बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे। एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। आई रिमेंबर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर। इनफैक्ट गाना इन टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग। इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने YouTube पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए। उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है। जहां इट डजंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप एक गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार है निखिल डिसूजा। ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है। दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: What a song! Tanishq Bagchi की composition है, ध्वनि भानुशाली है निखिल डिसूजा की आवाज, अराफत महमूद के लिरिक्स हैं, राधिका राव एंड विनय सप्रू ने ये वीडियो बनाई. Everything about this song is iconic. For the real OG pop culture fans, मैं एक indie pop quiz पूछूंगी आपको. It's a difficult one. At RJ Kanega on Instagram पर आओ और मुझे बताओ इस गाने वास्ते में ध्वनि भानुशाली का ब्रेकअप होता है, ठीक है? वो ब्रेकअप कितने बजे होता है मुझे आके at RJ Kanega पर बताओ. मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है आपको पता होगा. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. The social media sensation, गाने का नाम है शीशा, मिट्टा रॉर की आवाज इनकी कॉम्पोजिशन. मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Indie Top 10.
1: Kanika ke saath on Mirchi.
0: It's hot.
2: Mirchi stories.
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी
4: यार। थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
5: भाई इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM
11: Mirchi 1. It's
12: hot.
0: Ghana Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi
13: number 4.

0: Diljit Dosanjh, the man you are, and what a collaboration with Sia, gaane ka naam hai Ranja. Pichle hafte se ek nahi, do nahi, teen nahi, char bhi nahi bro. Pure 6 position super jump kar Ranja was this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10.
2: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Mirchi sun rahe aap. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. And this show is all about the hottest pop music of the week. वो कहते हैं हर गाना अपना लिस्टनर ढूंढ लेता है, पर पता नहीं कुछ गाने हमको रात को ही ज्यादा अच्छे क्यों साउंड करते हैं. लाइक रियली थिंक अबाउट इट, देयर आर सम सॉन्ग्स जो आपने दिन में 2-3 बजे सुना तो ठीक है, यू विल गिव इट लाइक अ 6/10. वही गाना 2 AM पे हिट्स राइट इन द फील्ड्स, दिल के सारे इमोशंस उमड़ जाते हैं. और ऐसा ही एक गाना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, उसका नाम है जुल्फे बाय साहिल. दो बड़ी टॉर्चेस के साथ इस गाने पर हम एक स्पॉटलाइट मारना चाहते हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. साहिल ने अपनी जर्नी बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह कवर्स गाकर ही शुरू करी थी, मैशअप्स गाई, वहीं से अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे जब लोग उन्हें ट्रस्ट करने लगे, उनके म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू करे, उन्होंने अपना ओरिजिनल म्यूजिक अपने फैंस के साथ शेयर किया. एंड फैंस ने कसके प्यार दिया, बहुत ओपन रहे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड दे केप्ट आस्किंग फॉर मोर न्यू सॉन्ग्स. उन्हीं में से एक गाना है जुल्फे. इट्स अ प्रॉपर लेट नाइट कन्फेशनल सॉन्ग, ऐसा मोमेंट जब आप किसी को कॉल नहीं करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते हैं. रियलिटी इमेजिनेशन के बीच का जो स्पेस है, जिसको मे बी आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, बट उसका भी अपना मजा है. इट्स क्वाइट R&B सॉन्ग, वेरी इंटीमेट, वल्नरेबल है, दैट साहिल की स्पेशलिटी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आज की हमारी गाना स्पॉटलाइट में दिस इज जुल्फे बाय साहिल, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
3: खुश

0: साहिल की आवाज में दैट वॉज जुल्फे फॉर ऑल द लेट नाइट थिंकर्स. अगर आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं ये गाने को बैकग्राउंड में लगाकर करना एटलीस्ट बेटर रहेगा. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ अपने 2 AM वाली प्लेलिस्ट शेयर करो. आई माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज मेरा आपका सबका 2 AM 2 PM 3 PM 5 PM सॉन्ग. ये गाना 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है अनूप जैन की आवाज में. गाने का नाम है अर्ज किया है. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स
4: बंद हो गया,
5: अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
6: कौन है?
7: स्टेन।
6: स्टेन कौन?
7: स्टेन कर दिया मेरे बैंड को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
6: खट खट, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi.
0: It's hot.
9: Indie Top 10
0: Kanika ke saath on Mirchi
10: number

0: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ये गाना बहुत पसंद है। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप किया है करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Gaana number 10 se Gaana number 2 ka safar hum pura kar chuke hain. Before we move on to the numero uno song of the week, it's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तू बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम का नाम ही काफी है, ही इज अ फुल रेंज म्यूजिशियन। जितने पॉपुलर सोनू निगम एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, उतने ही पॉपुलर वो एज अ पॉप स्टार भी हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया में पॉप स्टार्स कब बने? मतलब गाने बहुत बड़े हो जाते थे, पर उन गानों को हम वो गाना किस मूवी में आया है या उस गाने में कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है उससे याद रखते थे। देन केम अ वेव ऑफ आर्टिस्ट अर्ली 90s, लेट 90s में ये पॉप स्टार्स जैसे कि सोनू निगम, शान, लकी अली, जिन्होंने इंडियन इंडी पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया, जिनके गानों की म्यूजिक वीडियो में कोई बड़ी फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद फीचर होते थे। एंड सोनू निगम वाज द पोस्टर बॉय ऑफ दैट चेंज। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया उन्होंने। ऑल्दो वो बहुत बड़ी फिल्मों के लिए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक को भी उतना ही स्पेस एंड अटेंशन दी। एंड उस फेस का ये सबसे मस्ती भरा गाना है। The song is young, very peppy, एक flirtatious energy है, and किसी movie का scene बनने की जरूरत नहीं थी, because in its own इस गाने ने अपनी एक cinematic दुनिया बनाई। इस गाने में सोनू निगम के साथ बिपाशा बासु is the featuring actor. It was a youth favorite back then. It is till now. तो अपनी radio sets की volume बढ़ा दीजिए। सोनू निगम की आवाज में the forever iconic गाने का नाम है तू। It's playing right next for you on our cassette classic this week. बंदी का नाम है कनका। Enjoy.

यार ये गाना सुनते हुए लगता है कि टोपी पहनूं और उस टोपी को उल्टा कर दूं. समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग विच जस्ट सर्व्स स्वैग. सोनू निगम की आवाज में दैट वॉज टू ऑन आर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एल्बम का नाम है किस्मत, म्यूजिक है बिडू का एंड लिरिक्स हैं देव कोहली के. आई कांट बिलीव अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्वैग वर्ड यूज किया बिकॉज मुझे क्रिंज होता है उस वर्ड से. सो टू मेक माई सेल्फ फॉरगिव दैट एंड फॉर यू टू फॉरगिव मी, सीधा बढ़ते हैं इस हफ्ते के न्यूमेरो उनो गाने की टूवर्ड्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार ये गाना हिस्ट्री बना रहा है. गाने का नाम है बैरन बाय दिस सुपर टैलेंटेड म्यूजिकल एक्ट कॉल्ड बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. थर्ड टाइम इन अ रो बैरन इज ऑन गाना नंबर 1 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय. नंबर 1.

0: Blana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
2: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
3: मस्त जोक मरा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

अक्सर सोलो ट्रैवल करते हुए जब मैं कपल्स को साथ में घूमते हुए देखती हूँ तो दिल को बहलाने को गालिब यही सोच लेती हूँ कि प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, आजादी ज्यादा प्यारी है ना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन ये जो इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, आपके दिल और दिमाग के साथ खेलते हैं, क्योंकि फिर मैं कपल्स को जब स्वीट नथिंग्स में इंडल्ज होते हुए देखती हूँ, खूबसूरत नजारों को साथ में देखते हुए देखती हूँ, कभी कभी लगता है कि हाँ कंपेनियनशिप होनी चाहिए। फिर दिल में ख्याल आता है वो जो गाना हम अभी सुनने वाले हैं। बाय द वे, ये गाना जो कंपोज किया है SD बर्मन साहब ने, इसका जो आइकॉनिक माउथ ऑर्गन वाला म्यूजिक है वो माउथ ऑर्गन प्ले किया था RD बर्मन ने। आई थिंक यू गेस्ड इट राइट, दिस आइकॉनिक सॉन्ग राइट हियर ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: बना।
2: मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो, से बोल रहे हैं?
4: हाँ जी
5: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
4: ठीक है सर,
5: 5 सेकंड जल्दी।
6: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
4: हेलो
5: हेलो
4: हेलो,
5: प्लीज जल्दी बता दो।
4: हेलो,
5: होल्ड नहीं कर सकता। हेलो,
7: हाँ जी सर।
5: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
7: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
5: एक सेकंड।
7: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर।
5: एक सेकंड रुकिए।
7: सर साइड में, लेफ्ट साइड में।
5: ओ यार मेरा छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
7: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
5: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए। ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं?
7: हाँ जी।
5: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
7: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
5: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
7: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
5: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
7: हाँ जी।
5: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
7: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
5: क्या करूँ?
7: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
5: एक सेकंड रुकिए।
7: क्या हो गया?
5: गाड़ी ठुक गई।
6: मैडम क्या नाम है आपका?
4: दिव्या।
6: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
4: I was so tense, I don't know what happened.
5: मिर्ची आए, गाड़ी ठुक गई।
6: मैडम क्या नाम है आपका?
4: दिव्या।
6: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
4: Oh God.

0: पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन
1: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू उंगलियों

भाई वैसे तो लाइफ में इस गाने का वीडियो देखने को हमको बहुत देर बाद मिला, ये जॉनी मेरा नाम का जो गाना है हुस्न के लाखों रंग, क्योंकि छोटे होते इस तरह के गाने आपको मतलब दिखाए नहीं जाते थे ना, चैनल चेंज हो जाता था कि यू वर नॉट अलाउड टू वॉच सच सॉन्ग्स। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन जब भी देखा और पता चला कि इसमें जो डांस कर रही हैं पद्मा खन्ना जी, शी इज द सेम एक्टर जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में कैकई का रोल किया था, तो माई माइंड वॉज ब्लोन। क्या रेंज होती थी पुराने एक्टर्स की भाई। एंड सेम विद अरुणा ईरानी जी, आई थिंक उनको 90s में हमने देखा दिल तो पागल है फिल्म में, वो माधुरी दीक्षित की टीचर का रोल प्ले करती हैं, डांस टीचर का रोल। देन बेटा फिल्म में उनका जिस तरह का रोल था। एंड देन फिर कारवां के गानों में जब उनको देखा तो लगा कि ओ माय गॉड, ये क्या टेरिफिक बंदी है। वैसे बोथ पद्मा खन्ना जी एंड अरुणा ईरानी जी क्लासिकल डांस में वेल ट्रेंड रही हैं। कारवां का ये अमेजिंग गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
4: हाय इसका भी सही है, इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं शौक सभा होगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: Our business is our business, none of your business.
7: पर दीदी our entertainment is your entertainment. Entertainment.
8: Qatar का number one radio station.
9: 89.6
10: FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani jeans with Charu only on.

भाई ये भली भली भोली भोली जो सूरतें हैं ना, यही खेल कर जाती हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो क्या गाना था, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक शेर भी है सदा अम्बालवी का, हैं जितनी खूबसूरत उतनी ही हैं बेवफा, देखो बस दूर से ही इन हसीनों की अदा देखो। वैसे बंदियों को, हसीनों को क्यों हमेशा ऐसे बेवफा कहा जाता है यार, बंदे भी होते हैं। तो इसको हम थोड़ा चेंज भी कर देते हैं, हैं जितने खूबसूरत उतने ही हैं बेवफा, देखो बस दूर से ही इन आशिकों की आशिकी देखो। और फिलहाल हम एक आशिक के दिल का दर्द यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: खट खट,
7: कौन है?
6: ईशांत।
7: ईशांत कौन?
6: ईशांत गदाधारी भीम, ईशांत।
7: खट खट, who that?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: Purani jeans with Charu. Only on.

मैं ना वो गाने सोच रही थी जिनमें पहला लफ्ज आता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ज्यादातर मेरे जहन में 90s के गाने आ रहे थे। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, हम आपके हैं कौन का, या जो जीता वही सिकंदर का, पहला नशा पहला खुमार, या साजन फिल्म का था पहली बार मिले हैं मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया, या संघर्ष फिल्म का पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, फिर वो MP3 का गाना था मेरा पहला पहला प्यार है ये, और एक कुमार सानू का भी था पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा पहली ये मुलाकात है, एक और था पहले प्यार का पहला गम पहली बार है आंखें नम। तो ऐसे सब 90s के गाने ध्यान में आ रहे थे, बहुत पुराने गाने ऐसे कोई खास नहीं आ रहे थे। एक दो जो ध्यान में आए, एक तो लेके पहला पहला प्यार, या आज उनसे पहली मुलाकात होगी, या फिर ये वाला जो हम सुनने वाले हैं 1979 की फिल्म और कौन का ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: सो आई रिसेंटली मेट अ गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप, यू नो शी इज गुड बट शी अर्न्स वे मोर देन मी। आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या करूं।
2: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: रात के बज चुके हैं 10, मिर्ची पे शो का नाम पुरानी जीन्स।

आपको पता है 1982 की फिल्म शक्ति में गाने रखे जाएं या नहीं, इस पर बहुत सोच विचार किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्योंकि राइटर सलीम जावेद का ये मानना था कि इसमें जो मेन किरदार था अमिताभ बच्चन साहब का, वो इतना कोल्ड एंड क्वाइट टाइप का बंदा दिखाया गया था। दिलीप कुमार साहब उनके फादर प्ले करते हैं, उनके साथ उनका जो रिलेशनशिप दिखाया गया था वो एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप था। तो ऐसा बंदा जो ऐसे नाराज सा है सबसे, वो गाने थोड़ी ना गाता फिरेगा स्क्रीन पे, ऐसा सलीम जावेद राइटर्स का मानना था। लेकिन डायरेक्टर साहब रमेश सिप्पी, उनको ऐसा लगा कि कुछ गाने होने चाहिए, फिर एंड टाइम पे गाने जो है बनाए गए। और इसका वो जो एक गाना है, क्या सुपरहिट एवरग्रीन गाना है वो, जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। वैसे ये जो इसका एक और गाना हम सुनने वाले हैं, ये भी कोई कम नहीं है। क्या गाया है लता जी ने, क्या लिखा है बख्शी साहब ने, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल
4: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है
5: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
3: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
7: पटाक।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
9: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
10: हिट गाने
11: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani jeans charu ke saath, sirf Mirchi par.

बख्शी साहब का गाना हमने सुना जी, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। और जो अगला गाना ये भी बख्शी साहब का लिखा हुआ है, सनी फिल्म का गाना, लोग मिलते हैं जुदा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं। अहदे वफा मतलब वफा करने वाले, वादा निभाने वाले। इस पर एक शेर भी था, एक बेवफा से अहदे वफा करके आए हैं, अब आके सोचते हैं ये क्या करके आए हैं। क्या आप भी ऐसा करके आए हैं? मत करो बेवफा लोगों से वफा। इसी गाने की आगे लाइंस हैं, ये जो सनी फिल्म का गाना है, जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब सता लेते हैं जी भर के हमें, तब कहीं खुश वो जरा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं। जी बिल्कुल नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Mirchi
1: Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
4: हाय, इसका भी सही है। इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं, शौक सभा होगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है 1981 की फिल्म लव स्टोरी जब रिलीज हुई थी, जो कुमार गौरव और विजेता पंडित की डेब्यू फिल्म थी, तब विजेता पंडित वॉज नॉट इवन 14 ईयर ओल्ड। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब ये पुरानी फिल्मों में चाइल्ड लेबर कराया जाता था। वो 8th क्लास में थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा था कि माला सिन्हा चाहती थी कि उनकी डॉटर प्रतिभा सिन्हा इस फिल्म में कुमार गौरव के साथ लॉन्च हो, पर राजेंद्र कुमार जी ने मना कर दिया या बात नहीं बनी, क्योंकि प्रतिभा सिन्हा तब सिर्फ 12 साल की थी। मतलब ये फिल्मी सितारों के जो बच्चे, इनके मतलब पैदा होते से यही सपना हो जाता होगा ना, हीरो हीरोइन बनने का। खैर सपनों का क्या है, सपने तो सभी देखते हैं, किसी के पूरे हो जाते हैं, किसी के टूट जाते हैं, होता है चलता है दुनिया है। फिलहाल ब्रेक है पुरानी जीन्स पर, इट्स अ म्यूजिकल ब्रेक। गाना सुनेंगे हम लव स्टोरी फिल्म का ही। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: रजा मुराद जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
2: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
1: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

तो अभिमान फिल्म का वो जो सुंदर सा गाना है ना, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वैसे तो उसके सारे गाने सुंदर हैं, लेकिन वो जो गाना है मुझे तो बहुत ही सुंदर लगता है, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, जो गाया है लता मंगेशकर जी एंड मनहर उदास जी ने। तो ये ओरिजिनली ना लता जी के साथ मुकेश जी गाने वाले थे गाना, लेकिन मनहर जी ने एक डेमो वर्जन रिकॉर्ड किया और ये डेमो वर्जन सबको इतना पसंद आया तो यही डिसाइड हुआ कि उन्हीं की आवाज रखी जाएगी। तो मजरू साहब का लिखा हुआ, SD बर्मन साहब का कंपोज किया हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

उफ उफ उफ उफ इंतजार, क्या क्या लिख गए इंतजार पे लिखने वाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। गालिब ने कहा है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। विसाले यार मतलब यार से मिलना। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। सीमाब अकबर आबादी ने कहा है, उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। मुनीर नियाजी साहब ने लिखा है, ये कैसा नशा है मैं किस अजब खुमार में हूँ, तू आके जा भी चुका है मैं इंतजार में हूँ। चलिए इंतजार पे ही हसन कमल साहब की लिखी हुई ये खूबसूरत गजल सुनते हैं एतबार फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 89.6 मिर्ची पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

सुंदर गाना भूली बिसरी फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना तो देखो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये किसी ऐसी भूली बिसरी फिल्म का है। सीरियसली, मतलब मुझे ऐसे लगता था ये गाना किसी राजेंद्र कुमार माला सिन्हा टाइप की फिल्म होगी, उसका है। बट दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू अ मूवी कॉल्ड वापस, 1969 की ये मूवी है, जिसमें अलका अजय नाम के एक्टर्स थे। ऑनेस्टली मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा और मुझे पता चला। बट ये गाना कितना पॉपुलर है, ये फ्रेज कितना पॉपुलर है, एक तेरा साथ, कई बार के पीछे भी लिखा होता है 1137, एक तेरा साथ। मजरू सुल्तानपुरी साहब का ये गाना लिखा हुआ था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, एंड ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली सन बाय लता जी एंड रफी साहब। और अगला गाना अगेन अ ब्यूटीफुल डुएट बाय लता जी एंड रफी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। थाईलैंड में एक बंदा था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में चीयर गर्ल्स आए।
4: हाँ, इसका भी सही है। इसने अपनी आफ्टर लाइफ पार्टी का फुल प्लान सेट कर रखा था और ऊपर से अब ये शोक सभा नहीं, शौक सभा होगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
0: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।
9: पुरानी
0: जीन्स with Charu, only on

ओ भाई, मैंने 1968 की फिल्म दो कलियां वापस से देखी और मजा आ गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और सबसे मजेदार प्यारी उसमें नीतू सिंह जी एज चाइल्ड एक्टर, बेबी सोनिया नाम से वो काम करती थी ना एज अ चाइल्ड एक्टर, तो उसमें वो एक दो जुड़वा बहनों का रोल प्ले करती है जो बचपन में अलग हो जाती है क्योंकि उनके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं। फिर बड़ी होकर जब ये दोनों मिलती हैं तो रोल स्विच कर लेती हैं, मम्मी वाली पापा के घर चले जाती है, पापा वाली मम्मी के घर चले जाती है ताकि इन दोनों के पेरेंट्स वापस मिल जाएं। अभी एक्चुअली एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, 1965 की एक तमिल फिल्म थी विच वॉज बेस्ड ऑन 1961 की एक अमेरिकन फिल्म द पेरेंट ट्रैप, विच अगेन 1949 के एक जर्मन नॉवल लीसा एंड लॉटी पर बेस्ड थी। ये नॉवल लिखा था एरिक कास्नर ने। खैर, बैक टू दो कलियां। इस फिल्म का ये गाना सुनेंगे, संग बाय लता जी एंड रफी साहब, कंपोज्ड बाय रवि जी एंड रिटन बाय साहिल लुधियानवी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

आपको पता है 1963 की फिल्म तेरे घर के सामने, जिसमें देवानंद और नूतन लीड रोल्स में थे, उसमें संजय खान की फर्स्ट वाइफ जरीन खान जो थी, उन्होंने भी एक छोटा सा रोल किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी जरीन खान, जायद खान और सुजैन खान इनकी मम्मा। एक्चुअली वो एक मॉडल थी, फिर बाद में वो इंटीरियर डिजाइनर भी बनी, लेकिन उन्होंने एक दो फिल्मों में भी काम किया था, जिनमें से एक ये थी तेरे घर के सामने। इसमें उन्होंने जेनी नाम का एक रोल प्ले किया था, बट एक्टिंग उनको ज्यादा रास नहीं आई। हर किसी को एक्टर नहीं बनना होता है, और अभी यहाँ पे आप बात बना दीजिए। मुस्कान को ले जाइए कान तक और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और सुनते हैं खूबसूरत।

0: मिर्ची फ्रेश माल,
1: देसी स्वैग और हाई एनर्जी डांस वाइब के साथ सुनो, विया करवा दो जी।

इस गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल।

0: है मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।